0: की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति कहलाता है और यही मनुष्य का परम कर्तव्य भी है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो स्वयं से ही नहीं अपितु प्रकृति के हर जीव जंतु से प्रेम करता हो। ऐसा माना जाता है कि धातुओं में सबसे मूल्यवान धातु हीरा है, अतः हरि की भक्ति यदि हीरे के समान है तो अन्य सांसारिक वस्तुएं उसके सामने तुच्छ लगती हैं। इसके अलावा ईश्वर भक्ति में वह शक्ति है जिसके द्वारा भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य सांसारिक वस्तुओं के मोहजाल में बंधने पर मानव की शक्ति क्षीण हो जाती है। ईश्वर की भक्ति से मानव को शक्ति मिलती है, मनुष्य का अध्यात्म की ओर झुकाव होता है और अध्यात्म की ओर झुकाव होने से जीवन में परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। चिंतन के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शिव केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो हमें शांति, धैर्य और समर्पण का अर्थ समझाती है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सच्चे भाव को देखते हैं, ना कि बाहरी आडंबर को।

भक्ति संगीत से सजा ये कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे सरल साधना है और जब बात राम नाम की हो तो ये केवल एक नाम नहीं बल्कि विश्वास, मर्यादा और शांति का सम्मरण है। तो आइए इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं और सुनते हैं ये एक सुंदर राम भजन।

तो श्रोताओं, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर।

श्रोताओ, सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा। 9:00 सुनेगा फिल्म संगीत। सुबह 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 11:30 पर समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। दोपहर 12:00 आप सुना करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर बहनें सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी।

दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ गैर फिल्मी भजन। 5:25 पर सुनना ना भूलिएगा युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजां ग्राइंडियां, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7:10 पर किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात 8 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे संगीतकार हेमंत कुमार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। गूंज पहाड़ों की, लोक संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल पर आधारित विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा रात 10:00। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे सुबह 9:50 पर, दिन में 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर।

कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितंबर मासस्य अष्टाविंशति नवविंशति दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 29, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control LOC in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. The government noted that the resolve shown in 2016 laid the groundwork for subsequent bold actions, including the 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC. Mr. Modi recalled how the world was astonished by the manner in which Indian soldiers crossed the LOC to take action against terrorism. Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples.
1: LOC ke us paar jaakar hamare veer jawanon ne jis tarah aatankwad ke khilaf karwai ki thi wo dekh duniya hairan thi. Surgical strike ne dankay ki chot par puri duniya ke samne Bharat ki aatankwad virodhi niti ka एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी.
2: The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the IABA said that this decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association and the United Forum of Bank Unions last night on the issues related to the strike. The nation celebrates 119th birth anniversary of the great revolutionary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh today. It was on this day in 1907. Bhagat Singh was born in a village Banga in the Lalpur district of Punjab, which is now in Pakistan. More from our correspondent.
3: Bhagat Singh was born in a family of revolutionaries and was the second among seven siblings. He was lovingly called as Bhagamwala, meaning the lucky one. He proved his name for the freedom of the country by sacrificing himself along with Rajguruji and Sukhdevji. A state-level program titled Jashn-e-Inqilab has been scheduled at Ludhiana Agricultural University to celebrate his birth anniversary by organizing cultural events. People are also visiting his native village Khatkat Kalan at Shahid Bhagat Singh Nagar to pay their respects to the great son of the soil. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
2: The Department of Animal Husbandry and Dairying will launch the Livestock Insurance Portal in New Delhi today. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh will launch the portal, marking an important milestone in the digital transformation of livestock insurance services in the country. India has sent a consignment of life-saving medicines and medical consumables for the government hospital of Kabul as part of its ongoing humanitarian assistance. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that health remains at the heart of India's humanitarian assistance to the Afghan people. In men's cricket, Virat Kohli's majestic century and Shubman Gill's fluent 100 powered India to a commanding 8-wicket victory over West Indies in the first ODI in Thiruvananthapuram last night. Kohli remained unbeaten on a sensational 139, while Ruturaj Gaikwad finished unbeaten on 13. Chasing a target of 296, India made 300 for 2 in 41.4 overs to take a 1-0 lead in the 3-match ODI series. Kohli's innings was the centerpiece of India's successful chase as the former Indian captain produced an aggressive display after initially settling into the innings. And that is the end of this news bulletin.
4: LTI. एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी।
5: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, नए संकल्प और नई उमंगों के साथ मैं सचिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुहानी में। इस खूबसूरत सुबह की ठंडक और सूरज की पहली किरण आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, यही हमारी कामना है। तो श्रोताओं, आइए इस सुबह सुहानी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। क्या कहता है हमारा आज का सुविचार? श्रोताओं, जब किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ ना हो तो उसे थोड़ा सा प्रेम और सम्मान दें, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। क्योंकि दोस्तों, पैसों से महंगी चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन किसी के दिल में सच्ची जगह नहीं खरीदी जा सकती। अगर हमारे पास किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाने का हुनर है तो यकीन मानिए, हमसे ज़्यादा अमीर इंसान इस दुनिया

में कोई नहीं हो सकता, तो अपने किसी खास को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों से दिल की बात कीजिए। क्योंकि श्रोताओं, जब बात अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की होती है, उन्हें खुश करने की होती है, तो दिल बस कुछ यूं ही कहता है,

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी शुरू हो चुका है। इस सुविचार के बाद और इस प्यारे से गीत के बाद अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की। आज का ये दिन इतिहास में क्या जगह रखता है और क्यों खास माना जाता है।

सन 2018 में श्रोताओं आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर में जो कि केरल में है वहां पर सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और अमर शहीद भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन साल 1907 में हुआ था। और श्रोताओ, आज फिजा में एक अलग ही गूंज है, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रगों में खून खौल उठता है, आंखों के सामने एक अदम्य साहस और देश प्रेम की मूरत उभर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इनकलाब की परिभाषा बन चुके भारत माँ के अमर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। और श्रोता, उनके मन में बचपन से ही एक तपिश थी, उनके मन में बचपन से ही एक यही सवाल रहता था कि इस भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वे किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 8 अप्रैल 1929 जब भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन जेल की काली कोठरी भी उनके इरादों को डिगा नहीं पाई। उन्होंने जेल की अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। जेल के उस अंधेरे कमरे में भी वे किताबें पढ़ते रहे और देश के भविष्य के सपने देखते रहे। 23 मार्च 1931 को वह दिन आया जब लाहौल जेल में उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई, लेकिन उस समय भी इन वीरों के चेहरे पर खौफ का नामोनिशान नहीं था। वे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बल्कि मुस्कुराते रहे और फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके अंतिम शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश के नाम अपनी जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन श्रोताओं, अपने विचारों को वे अमर कर गए। शहीद आजम भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर युवा के दिल में उनका इनकलाब जिंदा है। जब तक इस देश में देशभक्ति की लौ जलती रहेगी, भगत सिंह का नाम अमर रहेगा। आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और ये गीत केवल गीत नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल की

0: जी हाँ श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी हम मना रहे हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए श्रोताओं हमारे कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओमेश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी। तो सर, आज विश्व रेबीज दिवस के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे?
1: पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर इतना रेडियो कार्यक्रम किया। इस वर्ल्ड रेबीज डे का थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। स्ट्रॉन्गर टुगेदर का मतलब ये है कि यदि हमने रेबीज को भगाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे कम्युनिटीज हो, चाहे वेटरनरी सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसमें आती है कम्युनिटीज। तो कम्युनिटीज के लिए मैं ये कहूंगा कि देखो, डॉग बाइट जो है वो रियलिटी है, वो होती है। हजारों डॉग बाइट्स रोज होते हैं और कब हो जाए ये भी मालूम नहीं होता। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि डॉग बाइट हो जाए तो करना क्या है। और सबसे पहला जो काम करने का है कम्युनिटीज के लिए, लोगों के लिए, वो ये है कि जो घाव है उसको 15 मिनट साबुन से झाग बना के उसको नलके के नीचे पानी छोड़ के बहते पानी में धोएं।
0: जी जी।
1: 60% रेबीज उससे बच सकते हैं उससे भी, क्योंकि जैसे कोरोना में आपने देखा कि साबुन से हाथ धोके कोरोना से वायरस से बच जाते थे, वैसे रेबीज का वायरस उसी तरह का है। तो यदि हम साबुन से झाग बना के 15 मिनट नलके के नीचे इसको बहते पानी में धोएं घाव को, तो 60% जो है रेबीज से बचने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। और उसके बाद हम कोई भी एंटीसेप्टिक, जैसे कोरोना में हम लगाते थे कोई हैंड सैनिटाइजर लगाते थे, आफ्टर शेव लगाते थे, कुछ भी अल्कोहलिक एंटीसेप्टिक को उसको लगाएं और तब हॉस्पिटल जाएं। हम क्या करते हैं कम्युनिटी के लोग की तुरंत काटा और सीधा हॉस्पिटल चले गए, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, उसमें रेबीज का होने का खतरा हो जाता है। तो मैं तो पहले ये बात करूंगा कि लोग जो है फर्स्ट एड के रूप में उस घाव को 15 मिनट नलके के नीचे बहते पानी में झाग बना के साबुन से अच्छी तरह से धोए और कोई एंटीसेप्टिक लगाए, तब जो है हॉस्पिटल जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे अस्पतालों में जो टीके हैं डॉग बाइट के, दो तरह के टीके होते हैं, एक घाव में लगता है, एक वैक्सीन लगती है बॉडी में, तो वो टीके हमारे फ्री हैं, सब लोग जो है उसको फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, वेटरनरी सेक्टर की मैं बात करूँ तो ये बड़ा जरूरी है कि हम जो इनकी पॉपुलेशन कुत्तों की बढ़ रही है, मेरे पीछे भी कुत्ते घूम रहे हैं,
0: जी, हम सुन रहे हैं जी।
1: तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसके लिए वो स्टरलाइजेशन अभियान चलाएं और कम्युनिटीज की हेल्प से जो कुत्तों को पकड़े, उनको नसबंदी करें, उनको टीकाकरण करें, और जब तक कुत्तों की पॉपुलेशन कम नहीं होगी रेबीज कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी
0: जी,
1: जिस तरह से अभी कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और हेल्थ का जहाँ तक रोल है, हम मैंने जिस पहले बताया कि हमारे यहाँ वैक्सीन और पूरी पूरा जो टीके हैं वो फ्री हैं और सब जगह PHC तक अवेलेबल हैं। और पॉलिसी मेकर की बात जहाँ तक आती है, मैं कहूँगा कि जो हमारी सिविक बॉडीज हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो इसे होके काम करें। यदि हमने बच्चों को बड़ों को रेबीज से बचाना है, उसके लिए एक पॉलिसी लाएं कि हम कुत्तों को वेटरनरी सेक्टर से के साथ मिलकर हम इनको नसबंदी कराएंगे, इनको वैक्सीनेशन कराएंगे। और चौथा रोल जो मैं समझता हूँ कि वो यह जो म्यूनिसिपैलिटी का रोल है कि जो गार्बेज का है कि गार्बेज इधर उधर ना बिखरा हो, खास करके जैसे नॉन वेज के बड़े सारे ढाबे यहाँ पे हैं, मैं सैर करने निकलता हूँ तो बड़े सारे ढाबे हैं, तो वो कुत्ते जो हैं वो सारा कूड़ा कचरा बिखेर देते हैं और उसको खाने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, तो उससे भी इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और उससे गार्बेज मैनेजमेंट की वजह ना होने की वजह से जो कुत्ते जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये म्यूनिसिपैलिटी का एक काम है कि गार्बेज मैनेजमेंट जो प्रॉपर हो और इधर उधर जो है लोग कूड़ा कचरा ना फेंके, खासकर रसोई का गार्बेज ना फेंके, और उससे भी महत्वपूर्ण है नॉन वेज की जो पीसीज कुत्ते लेके घूमते रहते हैं वो ऐसे दृश्य देखने ना आए
0: जी,
1: तभी हम रेबीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे सभी लोगों में ये भ्रांति है कि जो ये रेबीज है सिर्फ कुत्ते के काटने से ही होता है, क्या अन्य जानवर भी हैं जिनके काटने से ये बीमारी फैलती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ता जो है वो प्राइम होस्ट है इसका, जिससे रेबीज होती है मानता हूँ, लेकिन बिल्ली के काटने से, और खास करके मैंने देखा यहाँ कांगड़ा में जो हमारा नेवला है उसके काटने से भी डेथ हुई है। तो ये कुत्ता, बिल्ली, नेवला और बंदर और इवन श्रीलंका में और इंडिया में भी गिलहरी से काटने से भी डेथ हुई है। तो कोई भी एनिमल कटे, कोई भी मैमल कटे, तो वो टीके लगाने जरूरी है।
0: जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू
0: जी। जी श्रोताओं, हमारे साथ हमारे कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश भारती जी जुड़े थे, जिन्होंने विश्व रेबीज दिवस के बारे में हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा की। कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोताओ, आज का दिन सच में बहुत ही खास है, क्योंकि आपको बता दें कि आज ही के दिन 1929 में लता मंगेशकर जी का जन्म भी हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि रेडियो और लता मंगेशकर जी का रिश्ता भी बहुत पुराना है, क्योंकि 16 दिसंबर 1941 को उन्होंने रेडियो के स्टूडियो में पैर रखा था और दो गाने गाए थे। उस एक शुरुआत ने रेडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में सुरों की जो गंगा बहाई, वह आज भी बह रही है। उन्होंने 36 से ज़्यादा भाषाओं में हजारों गाने गाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे छू पाना नामुमकिन है। और उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चुलबुलेपन की आवाज़ में भी उन्होंने गाने गाए, गंभीर भी और साथ ही भावुक कर देने वाले ही। अब जैसे साल 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गाना ही ले लीजिए, जिसे सुनकर आज भी हर लड़की गुनगुनाने लगती है और अपने सपनों के राजकुमार को याद करने लगती है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम सुबह सुहानी में श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन खबरों के बारे में जानने का। श्रोताओं, देश में आज से शुरू हो रहा है बैंकों का 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। 5 दिन के वर्किंग वीक और पेंशन सुधारों की मांग पर अड़े बैंक कर्मचारी। सीबीआई और अन्य बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बात करें एशियाई खेलों की, तो एशियाई खेलों के तहत आज यानी 28 सितंबर को पुरुषों की T20 मुकाबले का पहला रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैदान पर पाकिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने सामने हैं, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। फुटबॉल के मैदान पर भी आज ग्रुप मुकाबलों का रोमांच देखने को मिल रहा है। बात करें मौसम की, तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों जैसे किन्नौर और लाहौल जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की है, जबकि शिमला और अन्य मैदानी पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोतो, जैसा कि अभी हमने आपके साथ ताज़ा तरीन खबरें साझा की, जिसमें हमने आपको बताया कि बैंकों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है, तो अभी हमारे पास एक ताज़ा अपडेट आई है। 28 से 30 सितंबर वाली प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है, तो हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आपका काम काज बैंक शाखा में कुछ बचा हुआ है तो आज आप जा सकते हैं अपनी बैंक शाखा में और अपना काम करवा सकते हैं।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:40 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग।

श्रोताओ, आशा तन्वर और शांति विष्ट के गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। आप सुनिए ये देशगान।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के

0: साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
1: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि

0: नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष

0: भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, when 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो

श्रोताओ, फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और श्रोताओ, अगला गीत सुनवाने से पहले हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक।
1: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
2: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
1: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
2: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: नई सोच।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
7: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
8: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
9: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
8: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
9: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
8: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
9: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
8: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa. फिल्म संगीत में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कच्चे धागे से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा।

0: राज्य सेवा प्राधिकरण की अतिरिक्त सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत। बातचीत का विषय है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे और इस कार्यक्रम को आप हमारे FM चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का श्रोताओं हम स्वागत करते हैं और आज एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज का कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी जी। आप अतिरिक्त सचिव हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। विजय लक्ष्मी जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: जानना चाहेंगे कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी कार्यशैली क्या है, यानी क्या कार्य करती है ये प्राधिकरण?
2: ये प्राधिकरण, इसका मुख्य लक्ष्य आम जनता तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि न्याय से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए। ये प्राधिकरण मुख्यतः गरीब, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों आदि के लिए काम करता है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कुछ स्कीमें बनाई हैं। इसमें मुफ्त कानूनी सहायता स्कीम व अपराध के पीड़ितों को मुआवजा स्कीम मुख्य स्कीमें हैं, जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता स्कीम में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे जिनकी आय 3 लाख से कम हो और दिव्यांग, ट्रांसजेंडर्स और औद्योगिक कामगार आदि होते हैं। इन्हें मुफ्त में वकील मुहैया करवाया जाता है और ये कानूनी सलाह भी मुफ्त में ले सकते हैं।
1: जी, तो विजय लक्ष्मी जी, आज का जो हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है, अब उसकी ओर आते हैं। तो ये जो ADR है, या हम करें इसके मैकेनिज्म की बात, तो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र ये क्या है?
2: वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जिसे हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी कहते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में दिया गया है। आमतौर पर लोग अपने झगड़ों का निपटारा न्यायालय में जाकर करते हैं, लेकिन यह प्रणाली एक ऐसा विकल्प है जिससे झगड़े का निपटारा न्यायालय के बाहर भी किया जा सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट में केस सालों साल चले रहते हैं। एक कोर्ट से केस का निर्णय हो जाता है तो हारने वाला पक्ष अपील में चला जाता है। इस तरह कई सालों तक एक केस का निपटारा नहीं हो पाता। हमारे न्यायालयों में बहुत से मामले लंबित पड़े रहते हैं, इसलिए केसों का निपटारा तुरंत नहीं होता है। मामलों का तुरंत निपटारा करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बहुत ही सहायक। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में झगड़े का निपटारा करने के लिए न्यायालय केस को आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत या मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।
1: वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में जो झगड़े हैं, इनका निपटारा किस प्रकार से किया जाता है?
2: वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में झगड़े का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इसमें झगड़े का निपटारा करने के लिए न्यायालय विवाद को आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत या मध्यस्थता के लिए भेजता है।
1: तो इन तमाम प्रक्रियाओं की जो कार्यशैली है, या जो आप कह रहे हैं कि इनको कॉन्सिलिएशन के लिए भेजा जाता है, किस प्रकार से?
2: जी, आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन के लिए केस मध्यस्थता व सुलह न्यायाधिकरण के पास आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अधिनियम के अंतर्गत भेजा जाता है। इसमें से अधिकतर मामले कंपनियों से संबंधित होते हैं, जिनमें कंपनियों का वादी के साथ समझौता हुआ होता है, जिसमें यह शर्त होती है कि वादी का कंपनी के साथ कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा आर्बिट्रेशन से ही होगा।
1: विजय लक्ष्मी जी, आपने बात की लोक अदालत की भी, तो ये जो लोक अदालत है ये किस तरह की अदालत होती है, और यदि कोई व्यक्ति झगड़ों का निपटारा लोक अदालत से करता है तो उसके क्या लाभ है?
2: लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान का एक तरीका है, जिसमें केस लोक अदालत बेंच को भेजा जाता है। इसमें झगड़े का निपटारा दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, इसलिए किसी की हार या किसी की जीत नहीं होती और दोनों पक्षों के रिश्ते भी आपस में बने रहते हैं। अदालत के फैसले की कोई अपील नहीं होती। जो भी फैसला होता है वह अंतिम निर्णय होता है और समय और पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि जिस केस को कोर्ट में कई साल लगने वाले थे वो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। लोग अदालत में दीवानी व फौजदारी कंपाउंडेबल केसेस सुलझाए जाते हैं, लेकिन गैर कंपाउंडेबल केसेस लोक अदालत में नहीं सुलझाए जा सकते हैं।
1: आपने मीडिएशन की बात भी की, तो ये जो मीडिएशन या मध्यस्थता जिसे हम कहते हैं, ये क्या है?
2: लोक अदालत की तरह ही मध्यस्थता भी एक न्यायालय के बाहर झगड़े को निपटाने का साधन है, जिसमें झगड़े को एक मध्यस्थ के पास भेजा जाता है जो कि एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। उसका केस या दोनों पक्षों के साथ कोई संबंध नहीं होता। मध्यस्थ परामर्श के माध्यम से दोनों पक्षों को आपसी सहमति से झगड़े का निपटारा करने के लिए राजी करता है। यदि दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो उनके बयान दर्ज करके मध्यस्थ उन्हें न्यायालय भेज देता है, जिसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है।
1: क्या मध्यस्थता किसी विवाद के कोर्ट में जाने से पहले भी हो सकती है?
2: जी हाँ, किसी विवाद में मध्यस्थता कोर्ट में जाने से पहले भी हो सकती है।
1: किस तरह से? जो हमारे तमाम सुनने वाले श्रोता हैं, आप बताएं कि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता किस तरह से होगी?
2: जी बिल्कुल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता झगड़े के कोर्ट में जाने से पहले होती है। इसमें दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय जा सकता है, दूसरे पक्ष को नोटिस द्वारा बुलाया जा सकता है। वहाँ पर जिला सचिव इस प्रकार के झगड़ों में एक मध्यस्थ नियुक्त करता है जो कि दोनों पक्षों से बातचीत करके झगड़े के आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यदि पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता से झगड़े का निपटारा होता है तो दोनों पक्ष सालों साल न्यायालय के चक्कर लगाने से बच जाते हैं। लोक अदालत की तरह ही इस प्रकार विवाद के निपटाने से समय और पैसे दोनों बच जाते हैं, किसी की हार नहीं होती और आपस में दोनों पक्षों के रिश्ते भी बने रहते हैं और जो भी निर्णय होता है वो अंतिम होता है।
1: तो विजय लक्ष्मी जी, आपने दो जो ये चीजें बताई, एक तो लोक अदालत की आपने बात की, दूसरा मीडिएशन या मध्यस्थता की बात की।
2: जी,
1: तो एक आम व्यक्ति तो यही समझ पा रहा है कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकली कोई ना कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों चीजों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है। तो इनमें क्या फर्क है मध्यस्थता और लोक अदालत में?
2: जी, दोनों ही वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए से विवादों को निपटाने का साधन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है कि जो मध्यस्थता है उसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी हो सकती है, विवाद पूर्ण मध्यस्थता भी हो सकती है।
1: जी,
2: इसमें पार्टीज डायरेक्टली डीएलएसए के पास जा सकते हैं और वहां पे अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन करवाना है। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डीएलएसए सेक्रेटरी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो आपके झगड़े में जो है एक मध्यस्थ नियुक्त करते हैं।
1: जी,
2: इसमें अगर दोनों पार्टी राजी नहीं होती तो एक पार्टी भी वहां जाके एप्लीकेशन दे सकती है, दूसरी पार्टी को नोटिस देके बुलाया जा सकता है।
1: जी,
2: और ये सबसे अच्छा तरीका है अगर पहले ही कोर्ट प्री लिटिगेशन मीडिएशन को प्रेफरेंस दे, क्योंकि इससे कोर्ट का बर्डन भी कम होगा और पार्टीज का झगड़े का निपटारा भी जल्दी हो जाएगा। और जो लोक अदालत है इसमें जो झगड़ा है जो केस है वो लोक अदालत बेंच को जाता है।
1: जी, जी।
2: लोक अदालत बेंच में एक जज होते हैं अध्यक्ष
1: जी,
2: और दो और लोग होते हैं जिसमें वो झगड़े का निपटारा करते हैं। वो पोस्ट लिटिगेशन केसेस में होता है, जैसे ऑलरेडी पेंडिंग जो केसेस होते हैं कोर्ट में, उस तरह के केसेस में लोक अदालत हो भेजा जाता है, उस तरह के केस लोक अदालत बेंच को भेजे जाते हैं और वहां पर तीनों जो एक चेयरमैन है और जो दो मेंबर्स हैं वो तीनों पार्टीज को परसुएड करेंगे, मनाएंगे झगड़े का निपटारा करने के लिए और इस तरह से लोक अदालत का अवार्ड पास होता है।
1: तो लोक अदालत और मीडिएशन के लिए क्या किसी वकील की भी आवश्यकता होती है?
2: नहीं, इसमें कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती। पार्टीज डायरेक्टली अगर केस कोर्ट में पेंडिंग है तो जज साहब को बोल सकते हैं कि हमारा केस लोक अदालत में लगवाएं, या फिर डायरेक्टली अगर प्री लिटिगेशन मीडिएशन है तो जाके सीधा सेक्रेटरी डीएलएसए को एप्लीकेशन दें या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या अगर मध्यस्थता पेंडिंग केस में करनी है तो पेंडिंग केस में भी जज साहब को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा केस मध्यस्थता के लिए भेज दें, तो उनके कहने पर ही जो सब मध्यस्थता या लोक अदालत जो भी जहां भी पार्टीज चाहे वहां केस को लगवा सकती है।
1: तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हम लोक अदालत में अपना कोई केस जाता है हमारा या मीडिएशन के माध्यम से कोई केस हम उसका समाधान करते हैं तो एक तो वकील का पैसा भी बच जाता है जो कि हमें वकील की फीस देनी होती है।
2: जी बिल्कुल।
1: और दूसरा आपको न्याय बहुत जल्दी यानी तुरंत हो जाता है, और ये भी हमने आपसे जाना कि जो लोक अदालत का जो फैसला है वो अंतिम निर्णय होगा, उसके अगेंस्ट आगे भी कोई अपील नहीं की जा सकती है।
2: जी,
1: आपने मुफ्त कानूनी सहायता की भी बात की, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है कुछ लोगों को?
2: मुफ्त कानूनी सहायता जिन लोगों को दी जाती है वो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं
1: जी
2: उनके लिए है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों और जिनकी आय कम है, 3 लाख से कम है। और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, जैसे दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको पिछड़ा माना जाता है हमारी सोसाइटी में।
1: कोई भी गरीब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो खुद अपना कानूनी तौर पर अपना केस नहीं लड़ सकता है पैसों के अभाव में, तो यही उद्देश्य है ना कि वो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति पैसों के अभाव में उसको न्याय ना मिल सके।
2: जी, पैसों के अभाव में या जानकारी के अभाव में, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं।
1: जी,
2: विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य ये भी है कि कानून की जानकारी पहुंचाएं।
1: जी,
2: जो अनपढ़ता है या फिर जानकारी के अभाव में भी कोई वंचित ना रह जाए, लाचारी से, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, उनको भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। और एक कॉम्पेंसेशन स्कीम भी है हमारी, वो कॉम्पेंसेशन स्कीम अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को मिलती है, जैसे मर्डर के पीड़ित, उनका फैमिली मेंबर्स हुए, और भी जैसे पीड़ित व्यक्ति हो, एसिड अटैक विक्टिम, रेप विक्टिम, इस तरह के विक्टिम्स को जो विधिक सेवा प्राधिकरण है मुआवजा भी देती है, और कई लोग मुआवजा लेते हैं। अब जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है तो हमारे पास मुआवजा लेने वाले व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं।
1: तमाम सुनने वालों को आपका कोई विशेष संदेश?
2: जी, मैं अंत में ये संदेश देना चाहती हूँ कि छोटे छोटे विवादों को निपटाने के लिए लोग कोर्ट में जाने की बजाय वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए अपने केसों को निपटाएं, मध्यस्थता और लोक अदालत के जरिए अपने ज्यादा से ज्यादा केस सुलझाएं, ताकि कोर्ट में अत्यधिक काम का बोझ ना हो और समय और पैसे भी बचें, दूसरी पार्टी से संबंध भी बने रहें। जैसे हमने देखा है कि कोई केस होता है तो आपस में पार्टीज के संबंध भी बिगड़ जाते हैं, तो ये जो मध्यस्थता और लोक अदालत के जरिए केसेस होते हैं, इसमें किसी के हक में केस नहीं होता, एक ही पार्टी के, दोनों, जो भी फैसला होता है दोनों की रजामंदी से होता है। तो इस तरह से आपस में हम, जिसके साथ भी केस है हमारा, उससे हमारे रिश्ते भी बने रहते हैं।
1: जी विजय लक्ष्मी जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर आपने विस्तृत रूप से तमाम सुनने वालों को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक भी यहीं समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहेंगे, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: कानून की बात इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। राज्य सेवा प्राधिकरण की अतिरिक्त सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत। विषय था वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किया गया।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
5: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
4: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
5: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
4: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, सुनिए फिल्म संगीत।

0: श्रोताओ, अभी नसीब फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी।
1: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
2: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
1: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
2: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

हिना फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को हैं। कुछ ही देर में श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूं दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा S. वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA, एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था,

0: यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी, और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था, और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ हुए थे। तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था, और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी, और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी तो तैयारी है, उसमें काफी कुछ ना नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें, और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण, और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में सीडीआरआई की स्थापना को जन्म दिया, सीडीआरआई का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर सीडीआरआई को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और सीडीआरआई का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफ़ी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाएं कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
1: नॉर्मल लाइफ इम्पैक्ट
2: नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर, एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलेशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेस आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सकें। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं, एंड वो हमसे तीन चीज़ें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको तीन सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो, और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में, जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है

0: बड़ी जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिज्यूम कर सकते हैं। तो वो भी कोलेशन का जो एक आइडिया है कि ये एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था? और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए, और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई। GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया, और फिर GSDMA का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था। मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ADB की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो, और फिर GSDMA फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। GSDMA के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वह काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लान्ड तरीका होता है, CDRI भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई, पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
0: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, 1 बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड एक होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में हैं, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सकें और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सकें, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीज़ें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज़ में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो

0: कर रहा था जब भूकंप आया, तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, और वो गया नहीं टेक्स्ट। और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे, या पुलिस को नहीं कर पाएंगे, या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज़्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई, और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था। नर्मदा में जो डैम बन रहा था, तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था। तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था। और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है, उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था। तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था, और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब तक मैं वहाँ था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी, और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को, उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफ़ी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे जगह क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में, तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जहाँ पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा, स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं, तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा हम अभी पानी की बात कर रहे हैं और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो हैं है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें इसकी ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफ़ी कम हुआ, बारिश काफ़ी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं इसके कारण खेती पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूँ कि उस पर असर पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है, पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं, जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और दूसरा मैं कहूँगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था उस पर भी काफ़ी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं CDRI का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
0: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
0: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज़्यादा जरूरत, तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी की भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसकी, जब भूकंप आता है वो कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पर डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पर अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पर सोच अभी काफ़ी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर

0: देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी।
0: गर्मी, बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है। एक और चीज शुरू हो गई है, वाइल्ड फायर। अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा, काफी शहर में भी। तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा अटेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 degrees वार्मर ग्लोबली में। पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था। तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियल बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इस पे काम भी होने लग गया है काफ़ी।
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें, तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई?
0: है, और मैं चाहूँगा कि कृष्ण जी भी इस पे आके तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है। G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राज़ील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूँगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें इस्टेब्लिश हुए हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पर किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पर हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
1: डॉक्टर,
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है। अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है। जैसे हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है, और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज़्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में। कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहाँ हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज़्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो

0: हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है, और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है, और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं, उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें, और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएँ। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक वरना बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी, और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे, और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें, ताकि ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं, और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्न कर सकें।
2: डॉक्टर, हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में, या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। सो उस पर अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज़ उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चे

0: एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए. सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं.
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए. बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी, लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक. आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी.
2: थैंक यू सो मच.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक. इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
4: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
4: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65

0: किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रूपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरीज घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रूपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भारत आज मना रहा सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को बताया एक महत्वपूर्ण पड़ाव। शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती आज। मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर। आज से शुरू होने वाले 3 दिन के देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। और CWC की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज जाएंगे दिल्ली, कल बैठक में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उसी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को रेखांकित किया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी हमलों के लंबे दौर के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। उन्होंने वर्ष 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। देश आज शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रही है। टीम 1 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, आवास और अन्य सार्वजनिक ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लेगी। अधिक ब्यौरे के साथ शिमला से हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में मानसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए आज प्रदेश आ रही अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को राज्य सरकार द्वारा सौंपे ज्ञापन में 3,412.80 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण आवश्यकता बताई गई है। ज्ञापन के अनुसार सभी 12 जिले बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जबकि 6,215 किलोमीटर सड़कें, 29 पुल और 1,208 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसके चलते सड़क व पुल क्षेत्र में 2,531 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। इसके अलावा 4,784 पेयजल योजनाएं, 1,090 सिंचाई योजनाएं और 110 सीवरेज योजनाएं प्रभावित होने से जल शक्ति क्षेत्र में लगभग 385 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने ज्ञापन में आपदा रोधी और सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से विशेष सहायता का आग्रह भी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।

0: सिरमौर जिला की बेटी पुष्पा राणा के नेतृत्व में देश की बेटियों ने एशियन खेलों में देश को गोल्ड दिलाते हुए एशियन खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं देश लौट रही गोल्ड दिलाने वाली बेटियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: सिरमौर जिला के शिलाई से ताल्लुक रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा राणा के नेतृत्व में देश की बेटियों ने एक बार फिर देश को गोल्ड दिलाया है। इस उपलब्धि के बाद सिरमौर जिला में जश्न का माहौल। वहीं महिला कबड्डी टीम कप्तान पुष्पा राणा के गृह क्षेत्र शिलाई में स्वागत की तैयारियां चल रही है। परिवार व गाँव के लोग खुद पुष्पा राणा के स्वागत के लिए दिल्ली पहुँचे। ये दूसरा मौका है जब पुष्पा राणा एशियाई खेलों का हिस्सा बनी हो। इस बार पुष्पा राणा के लिए एशियाई खेल इसलिए भी खास था क्योंकि वो खुद भारतीय कबड्डी टीम की कप्तानी संभाल रही थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। वे कल 29 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बाद देर शाम उनके शिमला लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर बैठक हो सकती है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया है। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। शिमला के संजौली क्षेत्र में 4-लेन अंडरग्राउंड टनल निर्माण के चलते मकानों में आई दरारों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर कल शाम लोगों ने संजौली टनल से संजौली चौक तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन व मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, NHAI और निर्माण कंपनी से प्रभावित मकानों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। नगर निगम के पार्षद नरेंद्र ठाकुर और विनय शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर मंत्री और उपायुक्त के माध्यम से प्रशासन से बातचीत की है।
5: यहाँ से ये टनल बन रही है, कम से कम 250-300 मकानों के नीचे से टनल जा रही है, तो सारे मकानों में दरारें आनी अभी स्टार्ट हो गई, अभी स्टार्टिंग है, तो आगे तो 200-250 मकान है। सारे लोग परेशान हो गए, रात को धमाके होते नीचे से, लेकिन कोई इसमें अभी कोई प्रशासन ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल तो ये भी काम बंद किया हुआ है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि गावर ने आगे दिया है, आगे से आगे सबलेट हुआ है। कई तो प्राइवेट ठेकेदारों को दिया, जो डंगे लगाते हैं उनको टनल का काम दे दिया हुआ करने को। तो हम चाहते हैं कोई अच्छी एजेंसी से काम हो।
0: प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी आज भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। अन्य क्षेत्रों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
6: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में भारी बदलाव आया है। जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज शिमला में दिन की शुरुआत हल्की गुनगुनी धूप और बादलों के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, खासतौर पर ऊंचे पर्वतीय इलाकों इलाकों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कल 29 सितंबर को भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव के चलते राज्य में मानसून की विदाई में भी देरी हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने बर्फबारी व हिमस्खलन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है किन्नौर, रोहतांग और स्पीति में बर्फबारी, छितकुल में हिमस्खलन, बारिश से बड़ी ठंड। दिव्य हिमाचल के शब्द है भारी हिमस्खलन ने डराया किन्नौर, छितकुल में कुदरत का कहर, किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 26 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले। दैनिक जागरण लिखता है 6 वर्ष बाद सितंबर में लाहौल की चोटियों पर हिमपात। दैनिक भास्कर ने खबर दी है कैथलीगढ़ से शिमला तक अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, दस्तावेज दिखाने की आज डेडलाइन, कल से शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पंजाब केसरी की सुर्खी है कांगड़ा में कबड्डी मैच देखने के दौरान छज्जा गिरा, 22 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज मना रहा सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को बताया एक महत्वपूर्ण पड़ाव। शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती आज। मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित और CWC की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज जाएंगे दिल्ली, कल बैठक में होंगे शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
7: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
8: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
7: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
8: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। जिनके सुरों में कभी मोहब्बत ने दस्तक दी, कभी विरहा ने अपनी कहानी कही, कभी खुशियों ने मुस्कुराना सिखाया, तो कभी देशभक्ति ने दिल में जोश भर दिया। एक ऐसी ही आवाज़ थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर गीतों का कारवा लेकर हम चल पड़े हैं उनकी आवाज़ से सजे उन गीतों की ओर, जो सिर्फ गीत नहीं हमारी यादों का हिस्सा हैं। मैं हूँ आपकी अपनी साथी मीनाक्षी। सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आपने ट्यून किया है FM 103.4 MHz पर, यानी आकाशवाणी धर्मशाला। तो कारवां का पहला गीत उस पड़ाव की ओर जिसकी मिठास आज हमारे दिलों में बसी हुई है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओ, ये गीत आपने सुना फिल्म किनारा से। आवाजें थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं विज्ञापनों के बाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: श्रोताओ, लता जी का जन्म नाम हेमा था। बाद में उनके पिता के एक नाटक भावबंधन की पात्र लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा गया। लता जी हमेशा रिकॉर्डिंग के समय नंगे पैर गाती थी। उनका मानना था कि संगीत उनके लिए पूजा है। बचपन में उन्हें अभिनय बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें फिल्मों में अभिनय भी करना पड़ा। लता जी को संगीत के अलावा फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वे खाली समय में कैमरे से तस्वीरें खींचना बेहद पसंद करती थी। और अब आपको सुनवाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत। और जुदाई के एहसास को लता जी ने इस गीत में बड़ी गहराई से अपनी आवाज में उतारा है। वे आज भी हमारे दिलों को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म लोफर का ये गीत। संगीतकार और गीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज लता जी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम हम गीतों का कारवां ये प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि उन्हीं के गीतों पर आधारित है। तो लता जी को हमेशा से ही क्रिकेट का शौक था और भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर वे अक्सर खिलाड़ियों को बधाई देती थी और मैच भी देखा करती थी। लता जी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि 30 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने संगीतकार के रूप में भी काम किया और मराठी फिल्मों में आनंद घन नाम से संगीत दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नाम वास्तव में लता जी का ही था। तो अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म असली नकली का ये बेहद खूबसूरत संगीत।

0: That's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronks today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के मिले जुले स्वरों में। लता जी को सफेद साड़ी पहनना बेहद पसंद था और उनकी ये पहचान बन गई थी। और फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत सुनवा रहे हैं, शब्द रचना है SH बिहारी की। शुरू से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जब दिल में किसी की याद हो, रात लंबी हो जाए और तन्हाई हर पल को भारी कर दे, तब लता जी की आवाज़ उस दर्द को शब्द दे देती है। एक ऐसा ही गीत यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना। इस गीत में जुदाई की तपिश, इंतज़ार की बेचैनी और प्रेम की गहराई, सब कुछ लता जी की आवाज़ में इतनी खूबसूरती से महसूस होता है कि सुनने वाला खुद उस एहसास का हिस्सा बन जाता है। तो आइए लता जी की उसी दर्द में डूबी बेहद खूबसूरत आवाज के साथ सुनते हैं ये यादगार नगमा। फिल्म लेकिन से

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा कन्वर के गाए इस लोकगीत के साथ।

हमारी पहाड़ी संस्कृति की सबसे खूबसूरत पहचान है हमारे लोकगीत। इनमें हमारी मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की मिठास और पहाड़ों का जीवन बसता है। इसी रंग को आगे बढ़ाते हुए सुनिए ये प्यारा सा गीत अभिलाषा शर्मा की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये लोकगीत आपने सुना अच्छर सिंह परमार की आवाज में। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं बसंत लाल ठाकुर की आवाज में।

कुछ गीत पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे होते हैं, धीरे से आते हैं और दिल में बहुत देर तक ठहर जाते हैं। सही, ये गीत आपके कानों के नाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप दीपिका शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को रेखांकित किया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी हमलों के लंबे दौर के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। उन्होंने वर्ष 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अदम्य साहस और वीरता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भगत सिंह की भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज से 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रही है। टीम 1 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहेगी। टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, आवास और अन्य सार्वजनिक ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लेगी। अधिक ब्यौरे के साथ शिमला से हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में मॉनसून से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए आज प्रदेश आ रही अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को राज्य सरकार द्वारा सौंपे ज्ञापन में 3,412 करोड़ 80 लाख रुपए की पुनर्निर्माण आवश्यकता बताई गई है। ज्ञापन के अनुसार सभी 12 जिले बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जबकि 6,215 किलोमीटर सड़कें, 29 पुल और 1,208 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसके चलते सड़क व पुल क्षेत्र में 2,531 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। इसके अलावा 4,784 पेयजल योजनाएं, 1,090 सिंचाई योजनाएं और 110 सीवरेज योजनाएं प्रभावित होने से जल शक्ति क्षेत्र में लगभग 385 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने ज्ञापन में आपदा रोधी और सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से विशेष सहायता का आग्रह भी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से स्वच्छ, स्वस्थ और नशामुक्त हिमाचल के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। वे कल रोटरी क्लब शिमला मिडटाउन के वार्षिक कार्यक्रम मंथन के 25वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

0: कार्यक्रम में शिमला और आसपास के विभिन्न स्कूलों के 400 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और रोटरी सदस्यों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के वन जल स्रोत, नदियां, ग्लेशियर और जैव विविधता भावी पीढ़ियों की अमूल्य विरासत है। उन्होंने युवाओं से जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के कम उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। वह कल 29 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बाद देर शाम उनके शिमला लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर बैठक हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी।
2: महक पंजाबी प्रोग्राम जी तुहाडा स्वागत है, जिथे हर गीत सिर्फ सुनिया नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
7: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
6: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
7: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
6: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। टीएनसी अप्लाई।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: मूड नू रिफ्रेश करनी काफ़ी है एक वधिया गीत। लो जी, पेश है अगली पेशकश।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
4: जो पंजाबी बीट नूं समझदा है वह मूड सैट करना भी जानता है। लो जी, पेश है अगला गीत।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa. मूड नू रिफ्रेश करनी पेश है एक और प्यारा जिहा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
1: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
1: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों की तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
2: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
2: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं
2: जी।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
2: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
3: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
4: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
3: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
4: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
3: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
4: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे

0: पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
1: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
1: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
1: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
3: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
4: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं क्या क्या मसला
5: है। ठीक है,
6: भगवान सब ठीक
2: कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा।
6: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
6: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
6: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से हैं।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
6: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई के
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
6: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
9: भगवान ये क्या हो गया, क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
6: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
6: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
8: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
7: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा,
10: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
4: भारत माता की
10: जय,
4: भारत माता की
10: जय।
11: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
12: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
11: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
12: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
11: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
4: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले,
12: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
11: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
0: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
0: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
1: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
0: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
1: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
0: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
1: धन सिंह, हमें

0: तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। जल्दी से जल्दी सहायता पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
8: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर।
9: जय मां काली,
10: आया गोरखाली, फायर।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।

0: दुर्भाग्यवश उनके युद्धबंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
3: चिट्ठी, ला दिखा तो।
2: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी, उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
4: जिंदा है। अरे बहुत खुशी
2: का बेटा,
4: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद,
5: सौम्या,
6: प्रसून
5: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
6: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर।

आकाशवाणी का यही धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बतें फिल्म से ये गीत।

अगला गीत सैनिक भाइयों आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सातवां आसमान फिल्म का ये गीत सुना। उदित नारायण और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब आपको जिगर फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं।

सैनिक भाइयों, अभी आपने अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में ये गीत सुना। इस गीत को हमने लिया था आंटी नंबर वन फिल्म से। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

एक अनोखी आरजू है। रंग, रिवाज, गीत और कला, यही हमारी पहचान है। अपनी संस्कृति को सहेजना ही हिमाचल का सम्मान है। तो कार्यक्रम सुनो सखी का ये खास अंक यानी हिमाचली संस्कृति सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके सपने पसंदीदा कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं उस विरासत की जो सिर्फ हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर है। हमारी संस्कृति केवल पुराने रीति रिवाजों का नाम नहीं है बल्कि संस्कृति वो धागा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। लेकिन सखियों, आज एक सवाल हमारे सामने है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी इन पारंपरिक कलाओं से उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी पिछली पीढ़ियाँ थी। तकनीक और आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना चुनौती ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। और इसमें सबसे पहला कदम है पारंपरिक कलाओं को युवाओं की रुचि से जोड़ना। हिमाचली लोकनृत्य नाटी हो, लोकगीत हो, पारंपरिक वाद्य यंत्र हो, चंबा की हस्तकलाएं हो, कुल्लू की बुनाई हो या कांगड़ा की चित्रकला, इन कलाओं को केवल किताबों तक सीमित ना रखकर युवाओं को इन्हें सीखने और प्रस्तुत करने के अवसर देने होंगे। स्कूल और कॉलेजों में लोक कला की कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। स्थानीय कलाकार युवाओं को सीधे प्रशिक्षण दे सकते हैं। इससे एक और युवा अपनी जड़ों को जानेंगे तो दूसरी और हमारे कलाकारों की कला भी अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। और सखियों, आज के इस डिजिटल दौर को भी हम अपनी संस्कृति का साथी बना सकते हैं। युवा हिमाचली लोकगीतों, नृत्यों, हस्तकलाओं और लोक कथाओं पर छोटे वीडियो, पॉडकास्ट और डिजिटल कहानियां बना सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पारंपरिक कला हिमाचल से निकलकर देश दुनिया तक पहुंच सकती है। सोचिए, जब कोई युवा नाटी की थिरकन को आधुनिक प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने रखता है, जब कोई युवा अपने गांव के बुजुर्ग से लोक कथा सुनकर उसे डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है, तो वह केवल एक वीडियो नहीं बनता बल्कि अपनी संस्कृति को नई जिंदगी देता है। हमें युवाओं से ये नहीं कहना है कि आधुनिक बनो या संस्कृति को अपनाओ बल्कि उन्हें ये समझाना होगा कि आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चल सकती हैं। हम मोबाइल भी चला सकते हैं और लोकगीत भी सीख सकते हैं। हम आधुनिक शिक्षा भी ले सकते हैं और अपनी लोक कला को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां हिमाचल का युवा अपनी संस्कृति पर गर्व करे, स्थानीय कलाकारों से सीखे और इस विरासत को नई सोच, नई तकनीक और नए अंदाज के साथ आगे बढ़ाए। बातें अभी और भी हैं लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम क्योंकि वक्त हो रहा है इस खूबसूरत से गीत को सुनने का। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में, जहां अब हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे शहीद भगत सिंह पर। जी हां सखियों, कुछ नाम सिर्फ नाम ही नहीं होते, बल्कि वे इतिहास की पहचान बन जाते हैं। कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि हर पीढ़ी के दिल में गहरे उतरते जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है शहीद आजम भगत सिंह का। आज 28 सितंबर को हम नमन करते हैं उस महान क्रांतिकारी को, जिसने बहुत छोटी उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगाल लायलपुर जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही उनके मन में देश की स्वतंत्रता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना थी। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहने का नाम भी है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी और उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर हो गया। आज भगत सिंह जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके साहस, देश प्रेम, विचारों और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। वतन की मिट्टी से जिसने अपना रिश्ता निभाया, हंसते हंसते जिसने मौत को भी गले लगाया, आज भी गूंजता है उनका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में। वो भगत सिंह ही था जिसने भारत को आज़ादी का सपना दिखाया। जय हिंद, जय भारत। और सखियों, शहीद भगत सिंह के बाद एक और जयंती हम मना रहे हैं, यानी सुरों की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। एक ऐसी ही आवाज़ थी भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। आज 28 सितंबर को हम मना रहे हैं भारतीय संगीत की उस महान गायिका को, जिनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को अपने सुरों से जोड़ा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मिली। लता जी ने अपने लंबे संगीत सफर में हिंदी के साथ साथ अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी। चाहे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति हो, विरह की पीड़ा हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति की भावना, उनकी आवाज़ हर भाव को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करती थी। उनकी आवाज़ ने फिल्मों के पर्दे पर दिखाई देने वाली अभिनेत्रियों के किरदारों को जैसे एक नई पहचान दी। यही कारण है कि लता जी की आवाज़ भारतीय सिनेमा और संगीत की स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन गई। उन्हें भारत रत्न सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनका एहसास हमारे दिलों में आज भी बसा हुआ है। शुरू में बसी एक मीठी याद की तरह है लता जी, और हर दिल की धड़कन में आज भी आबाद हैं लता जी। संगीत की दुनिया में उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो आइए आज उनकी जयंती पर हम उस महान स्वर कोकिला को श्रद्धापूर्वक याद करें, जिसने संगीत को सिर्फ गाया नहीं, बल्कि उसे महसूस करना सिखाया। तो उनकी यादों को समर्पित ये गीत चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापनों के बाद एक फिर से हाजिर हूं मैं मीनाक्षी कार्यक्रम सुनो सखी में, जहां अब हम बात कर रहे हैं विश्व रेबीज दिवस पर। सखियों, एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर भारी पड़ सकती है, लेकिन समय पर उठाया गया सही कदम जिंदगी बचा सकता है। हर वर्ष 28 सितंबर यानी आज ही के दिन हम विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को रेबीज से बचाना और जागरूकता के प्रति सचेत करना है। रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने से फैल सकती है। कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर ऐसा हो जाए तो घाव को साबुन और बहते पानी से लगभग 15 मिनट तक अच्छी तरह से धोएं और बिना देरी किए डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पालतू कुत्तों का समय पर टीकाकरण भी रेबीज से बचाव का महत्वपूर्ण उपाय है। तो सखियों, बहुत सी बातें आज हमने की और बातों के बाद अब समय हो गया रसोई घर में रुक करने का, जहां आज मैं बनाने जा रही हूं करेले का अचार, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने करीब 1 किलो करेलों को अच्छे से धोकर गोल गोल काटकर नमक हल्दी लगाने के बाद जब वो पानी छोड़ दे उसके बाद 4 से 5 घंटे की धूप में सुखा लिया था। अब कुछ खड़े मसाले मैं ले रही हूँ, जैसे कि 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ। इन सभी मसालों को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है और अब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर सभी करेले हम तेल में डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर, साथ ही डालेंगे सभी मसाले जिन्हें हमने मिक्सी में दरदरा पीसा था। अच्छे से सबको मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमारा ये चटपटा करेले का स्वादिष्ट अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। हाँ, लेकिन इसे अच्छे से 2 या 3 दिन धूप लगाना ना भूलें। तो सखियों, आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए। और खान पान के बाद सखियों, वक्त हो रहा है इस कार्यक्रम के अंतिम गीत को सुनने का, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिर कर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लता मंगेशकर की आवाज से जिस तरह से जुड़ते हैं उनको वो हमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता जी के एक साक्षात्कार में सुनी थी कि कैसे वे गायिका उमा देवी के साथ रिकॉर्डिंग के समय माइक पर पहुंचने के लिए स्टूल पर खड़ी होकर गाती थी और उमा जी के जरा सा स्पर्श से वे स्टूल से गिर पड़ी थी, और जैसा कि उन्होंने कहा आज भी वो समय याद आता है तो उन्हें बेहद हंसी आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे घर में रोजाना विविध भारती सुनने का माहौल था और जब से मैंने होश संभाला लता दीदी की आवाज़ में विविध भारती पर उनके सुरीले गीत सुनते रहे हैं और विविध भारती सुनने का शौक आज तक बरकरार है। और हम कहेंगे कि फिर लता जी की आवाज़ भी रोजाना सुनने का ये सिलसिला भी बरकरार हुआ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा तो नहीं जाता जब उनकी आवाज़ में एक भी गीत आपने न सुना हो, बल्कि कई गीत आप ज़रूर सुनते हैं रोजाना उनकी आवाज़ में। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत की अमर स्वर कोकिला थीं। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज़ ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। उन्होंने हिंदी के साथ अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी। उनके स्वर में प्रेम, विरह, भक्ति, संवेदना के अलग अलग रंग सुनाई देते थे। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अद्वितीय है और उनकी आवाज़ भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन लता मंगेशकर से जो आपकी यादें या भाव जुड़े हैं वो तो आप हमसे साझा कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे मिल पाते तो एक लाइन में या एक पंक्ति में बताइए कि क्या कहते हैं उनसे। ये आपको हमें बताना है कमेंट्स के जरिए। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप पहुंच सकते हैं इस पेज पर, और अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखिए, ब्लू टिक वाला ये जो पेज आपके सामने खुलेगा वहाँ आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट मिलेगी और यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मौका मिलता लता मंगेशकर से मिलने का तो एक पंक्ति में आप उन्हें क्या कहते, क्योंकि इतना ही मिलने का मौका मिलता ना। और एक बात आप हमें बता सकते हैं कि आवाज़ के अलावा लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। और आवाज़ की बातें तो हम कर ही रहे हैं, हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं इस बारे में कि लता मंगेशकर जी की संगीत यात्रा पर कुछ लिखना मानो सूरज को उसकी रोशनी का परिचय देने जैसा है। उनकी आवाज़ सिर्फ गीतों में नहीं करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसी है। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनके सुर आज भी वही अपनापन, वही सुकून, वही भावनाएं जगाते हैं। उनका नाम भारतीय संगीत के उस उजले अध्याय की तरह है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए उसी आवाज़ में सुनते हैं ये गीत, और आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की लघु कथा सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि उस अदम्य मानवीय भावना का दस्तावेज है जो कल्पना के सहारे अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाती है और जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। ये जीवन की उस निरंतर यात्रा का प्रतीक है जहाँ इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे साथियों से हमने पूछा था कि अगर आपको लता मंगेशकर से एक बार मिलने का मौका मिलता तो आप उन्हें क्या कहते, एक पंक्ति में हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से अगर मैं मिल पाता तो कहता कि सरस्वती माता के साक्षात दर्शन तो मैंने नहीं किए, परंतु आपसे मिलकर और देखकर मेरे सरस्वती माँ के दर्शन मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हो गए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी के गीतों को सुनते ही बड़े हुए, जवान हुए और अब बुजुर्गों में भी आ गए। लता दी के गीतों से सुबह होती है और रात भी वैसे ही होती है। उनके जाने के बाद भी हर रोज़ उनके गीत बड़ी शिद्दत से बजते हैं, उनकी कमी नहीं खलती क्योंकि उनको कभी देखा ही नहीं, वैसे ही आज हम उनके गीत सुनते हैं। ये कहा जा सकता है कि कलाकार अपनी कला के जरिए अमर होता है और इसी तरह से उनकी आवाज़ हमारे साथ बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से मिलते तो बस उनको देखते रह जाते और सिर्फ उनके चरण स्पर्श कर लेते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलने का अवसर मिलता तो शायद ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने शब्दों की नहीं सिर्फ श्रद्धा की ज़रूरत होती और मेरी श्रद्धा का सबसे सच्चा शब्द होता धन्यवाद लता जी। कितनी खूबसूरती से आपने अपने भावों को बयान किया। हमारे और साथी कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने मिलता तो हम कुछ नहीं कहते, केवल उन्हें नमन कहते क्योंकि कुछ कह ही नहीं पाते। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि इस इबारत की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के अमर गीतों और धुनों को किसी जीवित एहसास की तरह बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। आज़ादी परदेसी से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक के बोल महज पंक्तियां नहीं बल्कि दो प्रेमियों के बीच संवाद और भावनाओं की धड़कन बन जाते हैं। आवाज़ की तलाश को संगीत की एक ऐसी रूमानी यात्रा यहाँ

चांदी, आज भी इनकी मधुर आवाज हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है और हमेशा गूंजती रहेगी। लता जी को सादर नमन। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, लेकिन जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका साथ हमें कार्यक्रम में मिलता रहे तो मजा दुगुना हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताना है कि संगीत किसका है और फिल्म का नाम।

मधुमती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलने का मौका मुझे मिलता, मैं तो हल्का बीकानेर होकर देखती रहती, मेरे मुंह से शायद ही कोई शब्द निकलते, बस यही सोचती कि साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन करें, इतना साधारण व्यक्तित्व और इतनी अद्भुत कला। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी को एक बार जयपुर आने का प्रोग्राम था, एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी थी, जब पता चला कि लता जी आ रही हैं तो इन्होंने हमें भी घर से बुला लिया, तब साक्षात सुर साम्राज्ञी के दर्शन हुए, उनकी वो मुस्कान आज भी याद है। तो भाई कुछ चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें देखा, इनमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा इन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विविध भारती एक है, एक विविध भारती एक ही लता मंगेशकर। आएगा आने वाला गीत से हिट हुई लता मंगेशकर का लगभग हर गीत अनमोल है, इसलिए 6 दशकों से अधिक के लंबे सुरीले सफर में कई पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। हम स्त्रियों के सुख दुख के हर क्षण के गीत हैं इनके गीत कोश में, शायद इसलिए लता जी के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाना आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है, सब एक से बढ़कर एक। और आगे इन्होंने कई गीतों के बारे में बात की है और उससे संबंधित बातें लिखी हैं। हालांकि बहुत से साथियों

0: कमेंट है, इसलिए हम इनके कमेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भारत में जैसे लता जी की जादुई आवाज़ ने गीतों के मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। उनके स्वर यात्रा में प्रेम है, विरह है, शरारत है, इंतजार है और जिंदगी के अनगिनत रंग भी हैं। उनकी आवाज़ की मिठास और सादगी ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और हिंदी फिल्म संगीत को एक अमिट पहचान दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे साथी ने। और कह रही हमारे साथी कि आज सुबह से खूबसूरत गीतों का इंतजार रहेगा, सुबह से रात तक रेडियो पर एक ही आवाज़ गूंजती है, स्वर कोकिला लता जी संगीत का पर्याय है, वो कोई भी गीत गाएं मन मोह लेता है। विविध भारती पर कई गीत पहली बार सुने और बेहद ही पसंद आए, लता जी को सादर नमन। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सबकी सरस्वती माँ की याद का दिन है, हमारे देश का गौरव, आन बान और शान है लता जी, उनके गाए हुए गीत हमारी विरासत है, आज जो भी गीत सुनवाएंगे बड़े ही प्यारे लगेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के गद्यांश में एक बात जो इशारा कर रही है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में, लता जी के स्वर से आज की गीतों की महफिल रोशन होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गायकी के पटल पर लता जी का नाम एक अलग ही अक्षर की तरह लिखा गया है। वे सिर्फ लता जी नहीं बल्कि सरस्वती हैं, हम उन्हें गायन की देवी की तरह पुकारते आए हैं, वे हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से आसमान तक हम सबके हृदय पर विराजमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के लंबे इंतजार के बाद एक ही गाना याद आ रहा है कि तुम संग नेह लगाकर हार गई सजना। कोकिल कंठे सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी स्वयं सुर साध्वी साधना रत स्वयं सरस्वती की साक्षात मूर्त के रूप में अविरत हो अंतर ध्यान हो गई। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज बेटी के रूप में लता जी इस दुनिया में आई थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की संगीत यात्रा में लता जी नाम माँ शारदा की तरह वंदनीय है। हर आयु वर्ग में जीवन की हर परिस्थिति में उनके गीत अपने से लगते हैं। बचपन के लिए लोरियां, युवा काल के लिए प्रेम गीत, विरह गीत और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत, जिंदगी के विविध रंगों को लता जी ने अपनी देवी आवाज से एक रंगोली की तरह सजा दिया है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही तो भाई एक गीत तो सुनना बनता ही है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत किसने लिखा।
1: मिला है किसी का

0: परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान, वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे हैं मधुमती फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी, ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलील चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज़ में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजादी के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफ़ी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है, और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज, साथ में मोहम्मद रफी की आवाज में ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोशन का संगीत, साहिल लुधियानवी की बोल, सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के मौके पर लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो केवल एक नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जज्बात का नाम है। हिंदुस्तान की आवाज है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द हैं बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जादुई जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज़ हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज़ से शुरू हुआ सफ़र तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज़ के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज़ की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफ़र पर निकल पड़ता है जहां प्यार भी है, इंतज़ार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई, जब प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई, ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही हैं, तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि भाई आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या और लगातार 365 दिन उनकी आवाज़ में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोज़ाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज़ गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफ़र पे जाती हूँ तो अपनी ही पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है। घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूँ मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की कि उनकी आवाज़ तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा एक सी रही। एक उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज़ मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी सादगी अच्छी लगती है, हमेशा सफ़ेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद हैं, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और बताइए किस फिल्म से लिया है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता, ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं, हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ हैं उनकी आवाज़ के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का मन करता है। वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है। तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

0: से न पूछो कि तुम
1: भाई। यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए भी कि हमसे ना पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज़ आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते इत्तेफाक रखते हैं। हम कह ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजा हुआ सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे, तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

दोस्तों, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खामोश रहकर अपनी महक लुटाता है। मील का पत्थर बेजुबान होकर भी पथिकों को राह दिखाता है। दिया खुद जलकर रोशनी लुटाता है। आंतरिक सौंदर्य की अपनी परिभाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें न शब्द होते हैं न आवाज, किंतु असर काफी गहरा। मौन रूपी संचित ऊर्जा का उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी खूब किया है। प्राचीन काल में लोग मौन का महत्व समझते थे। प्रकृति की आवाज को सुनने के लिए वे अपनी आवाज को कुछ समय के लिए विराम दे देते थे।

संसार में हर मनुष्य की पहचान उसकी बोली और व्यवहार से की जाती है। विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है भाषा, लेकिन मौन की अपनी भाषा है। सांसारिक भाषाएं जहां सीमित शब्दों में बंधी है, वहीं मौन की भाषा में अनंत शब्द अंतर्निहित हैं। केवल चुप हो जाना मौन नहीं है, बल्कि अपने वजूद में खो जाना है मौन। चुप्पी बाहर होती है, लेकिन मौन भीतर घटता है। चुप्पी में हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है, लेकिन मौन का अर्थ है स्वयं में उतरना और मन वचन कर्म से शांत रहना। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वयं से साक्षात्कार होता है। मौन हमें बाहरी छलावों से दूर ले जाकर सत्य का आईना दिखाता है और हम स्वयं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार ही मौन का लक्ष्य है।

मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। जहाँ मन है वहाँ असंतोष, शोक, जलन, प्रतिशोध, दुख और क्रोध जैसे कई भाव होते हैं। मौन में इनके अस्तित्व को मिटाना अनिवार्य है। मौन आत्मा की भाषा है जिसे सांसारिक कोलाहल के बीच सुनना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का नाम है मौन। भाषा और बोली के बंधनों को मिटाकर स्वयं से जोड़ता है हमें ये और जीवन में पूर्णता लाता है। मानसिक तनाव, व्याकुलता और अशांति के पलों में मौन शांति का प्रकाश पुंज है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में

0: में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
1: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमत

0: में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्योंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: उजाला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में जंगली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिल ध्यानवी के बोल है रोशन का संगीत।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इससे ठीक पहले आपने सुना गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाप बेटे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। ये सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्ष 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी हमलों के लंबे दौर के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ की थी, की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वे आज ऊना जिला के हरोली में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे।

0: दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली के रामपुर पुल के समीप विकसित की जा रही न्यू हरोली की परिकल्पना में पूर्व सैनिक भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस धनराशि में से 1 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस भवन के बन जाने से पूर्व सैनिकों को अपने कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी स्थान उपलब्ध होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए ईएसआईसी स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों व महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम व पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मांडविया ने कहा कि सरकार देश के सतत विकास के लिए उद्योगों के निरंतर विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। उन्होंने सभी हितधारकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
1: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना समय की मांग है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन संस्थाओं को बचाना बेहद आवश्यक है। आज सोलन में चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित आक्रोश रैली के दौरान धनीराम शांडिल ने कहा कि यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को निष्पक्ष कार्य करना होगा।
2: अगर हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था हमारा चुनाव आयोग है, जिसके मुद्दे हमारे सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं और सारी प्रक्रिया जितनी भी चुनाव की उनके माध्यम से होती है। इसलिए जो आक्रोश किया है, जो आज बच्चे हमारे और महिलाएं और सभी लोग इकट्ठे मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका आशय एक ही है। अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली ठीक काम किया होता जो करना चाहिए चुनाव आयोग को, तो शायद आज धरना प्रदर्शन की जरूरत न पड़ता।
0: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। इस वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को इन क्षेत्रों के भूस्खलन संभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए, जिसका विषय है सड़क संरचना को सुदृढ़ कर रही प्रदेश सरकार। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
4: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सड़क संरचना को अधिक सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सड़क निर्माण के साथ साथ सड़कों की सुरक्षा, जल निकासी, रखरखाव और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कृषि, बागवानी, उद्योग और पर्यटन के विकास में भी सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। 31 अगस्त 2026 तक प्रदेश में करीब 41,903 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें हैं, जो 15,608 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान कर रही हैं। इतने बड़े सड़क नेटवर्क का रखरखाव और उसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती भी है। इसी दिशा में सरकार ने फरवरी 2026 में सड़क जल निकासी नीति को मंजूरी दी। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का पानी सड़क क्षति का एक प्रमुख कारण है। नई नीति में सड़क की योजना और डिजाइन के साथ ही जल निकासी व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वर्षा की

0: तत्परता और जल ग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नालियों व अन्य जल निकासी संरचनाओं की योजना बनाई जाएगी। भूस्खलन और पानी के रिसाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भी निवारक उपाय किए जाएंगे। सरकार का जोर अंतिम छोर तक सड़क संपर्क उपलब्ध करवाने पर भी है। जीप योग्य और एम्बुलेंस लिंक सड़कों के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इनमें सड़क की चौड़ाई, पेवमेंट, जल निकासी, रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल ढलान संरक्षण तथा सड़क सुरक्षा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। सड़क बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए भी नई व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सड़क बुनियादी ढांचा संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के तहत सड़क परिसंपत्तियों की डिजिटल और भू समन्वित मैपिंग, त्वरित परिवर्तन तथा क्षतिग्रस्त सड़क परिसंपत्तियों की शीघ्र बहाली का प्रावधान किया गया है। सड़क प्रबंधन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। एक केंद्रीकृत रोड स्टेटस इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से विशेषकर मॉनसून और आपदा के समय सड़कों के बंद होने, बहाली और यातायात संपर्क की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इसके अलावा वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे माप पुस्तिका, बिलिंग और निर्माण कार्यों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद मिलेगी। सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जुलाई 2026 में स्वीकृत सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति के तहत सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण और मौजूदा सड़कों में सुरक्षा संबंधी कमियों की समय रहते पहचान कर उनका समाधान करना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा रहा है। सड़कों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए पैच वर्क की मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की गई है। इसके तहत गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए सामग्री, कार्यविधि और समय सीमा का एक समान ढांचा निर्धारित किया गया है। इससे सड़क मरम्मत कार्यों में जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं सड़कें बार बार खोदने की समस्या को कम करने के लिए पानी, बिजली और दूरसंचार सेवाओं के लिए भूमिगत बहु उपयोगिता डक्ट विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बार बार सड़क काटने और खुदाई की जरूरत कम होगी और सड़क बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार सड़क निर्माण के साथ साथ सुरक्षा, जल निकासी, डिजिटल निगरानी, रखरखाव और आपदा प्रबंधन को एकीकृत कर सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
4: गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
3: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थीं। मगर 1957 के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी, विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते, परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
5: आज तो दिवाली है।
3: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख कर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
4: हाँ, आज दिवाली है।
3: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
5: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
3: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।

0: वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरासी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबी रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कोई सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को। और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि आज क्या है,
4: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
3: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज़ नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ख़ासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना
4: की आवाज़ में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना जिन्होंने उनकी आवाज़ ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और

0: उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
1: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं कि बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज़ के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज़ के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आँखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज़ ने जगाया है।
0: बिल्कुल, और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज़ दी। नेहा, उनकी आवाज़ कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, हाँ, उसमें एक गाना तो ज़रूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं ज़रूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
1: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया। तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी यही कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल। और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों के चुनाव हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त है उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
1: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
0: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद हम आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
1: तो सुनेंगे अभी,
0: चलो सुनते हैं।
1: हाँ

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हा? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें ही तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे पसंद के।
1: भाई नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को, इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में हैं और सूचना फटाफट हम तक पहुंचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुंचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज़रूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पे संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है, और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो

0: घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल।
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, वो सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
1: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: हाँ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपना निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जैसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहाँ वहाँ ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें। बिल्कुल।
0: और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है।
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल। और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
0: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो हैं समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अधिकार देखो हमें सशक्त तो बनाते ही हैं, और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं, तभी परिवार हो या समाज हो, देश हो, तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
0: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं, है ना।
1: तुम्हारी आंखों में क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है मुझे।

0: भाई लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं, और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सहेली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताएं, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री 1/2 से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के कुछ आपको धागे लेने हैं 1 छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि 4 हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, 3-4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता। सूखे मेवे जो आपके घर में हो और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स

0: किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा।
1: हाँ।
0: और बचे हुए घी में अब हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता डालें। इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे
1: दूध
0: वो
1: में,
0: हाँ दूध में वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आँच करके इसमें चीनी मिला लिए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले और अच्छी तरह इसको आपको पका लेना है। और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर के पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं
1: हाँ।
0: घरों में बनता है ये उसी तरीके का ही है।
1: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है, और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए। राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है, और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना।
0: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गई है ना, खुशबूदार। हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
1: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है।
0: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
1: हाँ।

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा महेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें PCOD है, PCOS है
2: जी,
1: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है IVF
2: जी,
1: ये क्या है, इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
2: जरूर।
1: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
2: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
1: अच्छा।
2: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो PCOD जो है या PCOS या अभी PMOS हम जो बोलते हैं वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफ़ी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है। PCOD में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां, मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है।
1: अच्छा,
2: ये पहले नहीं था। हाँ। तो ये भी अभी मतलब जो जो
1: बड़ी समस्या
2: है, तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या PCOD, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है तो वुमेन काफ़ी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं। तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है तो शी शुड टेक हेल्प। एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
2: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में। और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका। अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ के लिए। तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना, तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफ़ी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब। तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए। और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इशू है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
3: संभावना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी
2: जरूर
3: चाहिए, डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए।
2: डेफिनेटली
3: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
2: नहीं,
3: है
2: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है
3: जी, जी।
2: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए
3: बिल्कुल। और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है। यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं। तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले
2: जी। तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट।
3: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए?
2: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
3: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: क्या है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में माहवारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना या पीरियड जब आता है

0: तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी,
0: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो निकल पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे 2 पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
0: यस, तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
0: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
0: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैन नॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज़्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज़्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
1: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
0: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली हैं बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं, हम पीएमओएस बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिलाओं को

0: रिलेटेड हैं, ये सब रिलेटेड
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं है और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती, ऐसी
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से। इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है। यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफ़ी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
1: बदलते हैं।
0: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियाँ 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
1: बिल्कुल।
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10।
1: अच्छा
0: जी,
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं।
0: तो, यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है
1: आती।
0: और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद, क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
1: अच्छा।
0: इसीलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
1: नहीं होता है,
0: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ये चेंज भी लाना बहुत ज़रूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं।
0: 100%
1: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना, आपने कहा 7:30 to 8 o'clock खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद, एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: है, नहीं है, yes, बिल्कुल।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं। तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होती है। तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं हैं। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज़ नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलोंग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर आल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ना हो। तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चिल्ला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ये इंसुलिन स्पाइक को नहीं होने के लिए।

0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं। उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए। उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी। बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोएं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान के उसको पी लें।
1: बॉईल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। हाँ। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
0: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है, प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: सो इट्स अलग-अलग शरीर में अलग,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशियो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है, तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: वो जल्दी
1: होने लगता है, तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में महावारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज़ कर रहे हैं या जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज़ को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कम्प्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल, बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मीन्स अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मीन्स देर इज ऑलवेज अ

0: चांस ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
1: बहुत
0: जरूरी है. ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
1: बताते ही हैं
0: हाँ। लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है उनको.
1: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से.
0: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट वन ईयर या टू ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना की वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है.
1: हाँ.
0: तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली एनीमिक हो जाएगी उसकी. और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है.
1: तो या ये भी चिंता का विषय हो जाता है.
0: काफी बार मदर्स आती हैं
1: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए.
0: जी जी जी,
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी.
0: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है. और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में.
1: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा ना छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है, तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को. तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है बच्चे, तो खैर लड़कियां तो रोने भी लग जाती है कई बार, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम 2-4 होते हैं. तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है. कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है. तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग होती है,
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्चे, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर ले, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं. जो 15-20 साल के बाद की एज के जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है. तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है.
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का.
0: जी
1: बताइए.
0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा.
1: आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत.

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसा आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है,
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सर्फेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ एमआरआई, मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट
0: जरूरी है। yes. इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं। yes.
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना
1: जी,
0: या असामान्य स्राव, ज्यादा रक्त स्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो ल्यूकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा,
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है या बहुत बदबू आना या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
1: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
0: अच्छा, जो एक आम समस्या है।
1: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
0: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये भी एक आम समस्या की,
1: ये बहुत ही आम है,
0: आम समस्या है।
1: यस,
0: तो ये एक सामान्य है या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
1: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
0: अच्छा.
1: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
0: कहाँ में है,
1: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है.
0: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है.
1: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शंस भी हो सकते हैं.
0: तो इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज हमें.
1: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का.
0: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
1: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है तो डरना नहीं है.
0: इलाज संभव है इसका.
1: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है. हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं.
0: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं.
1: जी
0: बताइए.
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे.
0: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़.

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के।
3: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे।

0: और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India has set an ambitious target of raising its total exports of goods and services from $863 billion last year to $1 trillion this year. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said, merchandise exports have grown by more than 15% in the first 6 months of the current financial year, despite global challenges. Addressing media after the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai, Mr. Goyal said, bilateral trade has doubled to around $100 billion under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. The two countries now aim to take it to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: The Supreme Court today refused to stay the center's decision to impose merchant discount rate or MDR on specified person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupees with charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India, Surya Kant, and Justice Joy Malia Bagchi and Justice V. Mohanna sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India, and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. The country is observing the 10th anniversary of the surgical strikes today that demonstrated to the world an example of the Narendra Modi government's counter-terrorism policy. In 2016, on September 28-29, the Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, or LOC, in Pakistan-occupied Jammu Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, when 19 Indian soldiers lost their lives. In his Mann Ki Baat program yesterday, the Prime Minister described the strikes as a historic milestone. The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. The Delhi government has announced a ban on dust-generating demolition activities and outdoor civil construction activities from 1st November to 31st January next year. The decision was taken during the meeting held between Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav and Delhi Chief Minister Rekha Gupta today to review the Delhi government's Air Pollution Mitigation Action Plan. The Directorate of Revenue Intelligence has busted a pan-India gold smuggling syndicate with the seizure of over 6.6 kilograms of foreign origin smuggled gold worth around over 10 crore rupees. The Finance Ministry said the syndicate operated through the courier network and had transported 318 kilograms smuggled gold worth 475 crore rupees through courier channels in the past 9 months. 11 persons have been arrested related to the case, including one of the masterminds. Further investigation on the matter is underway. In Nepal, at least 4 people lost their lives and 12 others are missing after an avalanche struck the base camp of Mount Himlung in mountainous Manang district. According to Manang's Chief District Officer, Mukti Prasad Khanal, the bodies of 4 people have been recovered from the site. 2 bodies have been airlifted to Kathmandu, while 2 others have been brought to the district headquarters. Benchmark domestic equity indices declined sharply by over 1.5% today. The Sensex plunged 1,124 points to close at 72,772. Nifty shed 360 points to settle at 22,780. And India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today, with athletes making their mark across shooting, cricket, kurash and boxing. The country added 4 more medals to its tally so far today. Athlete Gulveer Singh has won his 2nd silver medal at the ongoing Games, finishing runner-up in the men's 1500-meter event. In shooting, Isha Singh has won the silver in the women's 25-meter pistol individual event. And that is the end of this news bulletin.
4: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भजन।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
5: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
6: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रूपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रूपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रूपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रूपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: भजनों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला।

श्रोताओ, ये तो थी भक्ति संध्या कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने को हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा मंच।

तुम स्वयं पर संदेह कर रहे हो जबकि अन्य लोग तुम्हारी क्षमता से डरे हुए हैं। युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। हमारी क्षमताएं हमारी पहचान होती हैं, लेकिन इन क्षमताओं को केवल हम ही पहचान सकते हैं। ये क्षमताएं हमारी मेहनत से और निखरती हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। आज है सोमवार और इस दिन युवा मंच आधारित होता है उड़ान विषय पर। उड़ान हमारे सपनों की, उड़ान हमारी उम्मीदों की, उड़ान हमारे हौसलों की। बहुत कुछ है हमारे आज के उड़ान कार्यक्रम में। आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। गीत संगीत का भी पूरा पूरा ख्याल हम इस प्रोग्राम में रखते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: युवा साथियों, करियर का चुनाव हम 10th के बाद ही कर लेते हैं, क्योंकि जिन विषयों में हमें आगे बढ़ना होता है, जो विषय हमें पसंद होते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। प्लस वन में हम अलग अलग स्ट्रीम्स हमें चुनते हैं या हमें मिलती हैं, जिनमें से एक स्ट्रीम को चुनकर हमें आगे बढ़ना होता है। इसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस और न जाने कितने और विषय हैं जिन्हें हम अपने मेन स्ट्रीम्स के साथ चुन सकते हैं। कई लोग मेडिकल, नॉन मेडिकल को बूथ लेकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, कई ह्यूमैनिटीज़ के साथ कई अन्य विषयों में भी पारंगत होना चाहते हैं ताकि उनके करियर में उन्हें 2-3 ऑप्शंस मिल सकें। एक विशेष बातचीत आपको युवा साथियों सौरव के साथ सुनवा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने करियर का चुनाव किया और वो करियर क्या है और उन्होंने कैसे सफलता पाई। सौरव से आज के प्रोग्राम में बातचीत की है मीनाक्षी शर्मा ने, तो चलिए सुनते हैं।
1: कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी की प्यार भरी नमस्ते। और आज हमारे समक्ष मौजूद हैं धर्मशाला के स्टूडियोज में हमारे मेहमान, जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका।
2: थैंक यू मैम
1: जी। सबसे पहले तो अपना नाम हमें बताइए और क्या करते हैं आप?
2: मेरा नाम सौरव है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील बटियात का एक छोटे से गाँव का रहने वाला निवासी हूँ। और मैम, मैं अभी हाल ही में मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया है और मेरी अभी एक सेलिंग कंप्लीट हुई है, जिसमें मेरा जो रैंक था वो इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ मैम उसी में।
1: जी, तो मर्चेंट नेवी में जाने से पहले मतलब आपने इंजीनियरिंग की है?
2: यस मैम, मैंने इंजीनियरिंग बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है मैम मैंने।
1: बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि मर्चेंट नेवी क्या है और ये भारतीय नौसेना से किस प्रकार से अलग है?
2: मैम, मर्चेंट नेवी एक व्यावसायिक नौसेना है मैम। इसका काम युद्ध नहीं करना बल्कि समुन्द्र के रास्ते से दुनिया का जो व्यापार चलाना है मैम। और फॉर एग्जांपल, जो भी हम रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उसको एक देश से दूसरे देश तक ले जाना, इस मर्चेंट नेवी में जो काम रहता है मैम। नौसेना हमारी जो है देश की रक्षा करती है मैम, मर्चेंट नेवी अर्थव्यवस्था को चलाती है मैम, और जो नेवी है वो एक करियर है मैम।
1: तो अच्छा जी, आज के युवाओं के लिए मर्चेंट नेवी एक आकर्षक कैरियर क्यों बनकर उभर रही है?
2: मैम, इसके तीन कारण है जी। पहला, कम उम्र में डॉलर कमाना, और डॉलर का प्राइस तो सबको पता ही है आज की डेट में क्या चला है। और दूसरा जो है, टैक्स फ्री जो है अपनी सैलरी लेना, और देश विदेश तो घूमने को मिलता ही है मैम इसमें। तीसरा जो रहता है वो रहता है यूनिफॉर्म का सामान मैम, और समुन्द्र में काम करने का तो अपना ही अलग ही मजा है।
1: बिल्कुल। और अगर कोई छात्र 10वीं या 12वीं के बाद इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते उपलब्ध हैं?
2: जी मैम, मैम इसमें वैसे तो हम 10वीं के बाद इसमें हम जा सकते हैं, इसमें अलग अलग से कोर्स होते हैं मैम, जैसे जीपी रेटिंग हो गया या सलून रेटिंग कर सकते हैं। ये मैम जो कोर्सेज रहते हैं ये 6 मंथ के कोर्सेज रहते हैं मैम। उसके बाद जो है आप सीधे जहाज पे क्रूज की जो भी जहाज रहते हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं मैम।
1: तो इस क्षेत्र में आने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक फिटनेस और मेडिकल मानदंड आवश्यक है?
2: मैम, इसमें जो रहता है वो 10th रहती है मैम, और PCM रहती है
1: जी, और इसमें PCM के छात्र इसमें आ सकते हैं।
2: यस मैम।
1: और अन्य विषयों के विद्यार्थियों के लिए भी अवसर हैं?
2: यस मैम। मैम इसमें जो बेसिक जो सब्जेक्ट काउंट किया जाता है वो रहता है इंग्लिश मैम, जिसमें आपके 50% इंग्लिश में जो मार्क्स होने चाहिए मैम,
1: वो आना अनिवार्य है।
2: यस मैम जी। और मेडिकल की बात जो की है आपने, मेडिकल मैम इसमें जो आईज रहती है वो 6x6 बिना चश्मे के, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए मैम। शरीर जो अपनी बॉडी है वो पूरा फिट रहना चाहिए मैम पर्सन।
1: तो अच्छा, मर्चेंट नेवी में भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है? युवाओं को किन परीक्षाओं या प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है?
2: सबसे पहले मैम IMAU CET परीक्षा पास करनी होती है, फिर कंपनी का इंटरव्यू होता है मैम, उसके बाद DG शिपिंग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रेनिंग होती है मैम, और फिर जहाज पर सेलिंग मिलती है मैम।
1: जी अच्छा, सौरव जी अब बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? समुद्र में काम करने का एक सामान्य दिन कैसा होता है?
2: मैम, जहाज पे वैसे तो हर दिन अनुशासन वाला रहता है मैम। मैं इस टाइम ETO हूँ, और मेरी जो मॉर्निंग रहती है वर्किंग डेज की वो 6 से 12 ओ क्लॉक रहती है, और उसके बाद 4

0: 8 बजे तक जो मेरी ड्यूटी रहती है मैम, इसमें मेरा जो काम रहता है वो सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिफर कंटेनर देखना होता है मेरा काम मैम। इसमें कोई हॉलीडेज वगैरह नहीं होता मैम, हर दिन वर्किंग डेज रहता है।
1: अच्छा, लंबे समय तक परिवार से दूर रहना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, आप इस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं?
0: मैम यह इस नौकरी की सबसे बड़ी चुनौती है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब जहाज पर वाईफाई फैसिलिटीज़ हैं, रोज़ वीडियो कॉल हो जाती है,
1: जी
0: और आफ्टर वर्किंग के बाद जो है अपनी फैमिली के लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं मैम।
1: मतलब आसानी से जो घर पे है वो बातचीत आप कर सकते
0: यस
1: हैं।
0: मैम।
1: अच्छा, युवाओं में ये धारणा है कि मर्चेंट नेवी में वेतन बहुत अच्छा होता है, क्या ये सच है?
0: जी मैम, इसमें वेतन जो है वो बहुत अच्छा होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये टैक्स फ्री है मैम।
1: इसके साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं?
0: इसमें मैम जो भी हमारा रैंक होता है, जिससे रिलेटेड हमारा जो भी काम रहता है मैम,
1: जी
0: इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे डेक कैडेट्स होते हैं स्टार्टिंग में, इंजन में वर्किंग वाले जो भी रहते हैं, ऑयलर हो गया, जो भी डेजिग्नेशन अलग अलग रहते हैं, उसमें उनका जो काम होता है, और काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होती है मैम सेफ्टी। सेफ्टी इसमें बहुत ज़रूरी रहती है मैम।
1: तो क्या महिलाओं के लिए भी मर्चेंट नेवी में समान अवसर हैं?
0: जी मैम, बिल्कुल मैम, अब तो महिलाएं भी कैप्टन बन रही हैं मैम, उनके लिए भी वही कोर्स, वही परीक्षा और वही वेतन है मैम।
1: सौरभ जी, ये बताइए कि इस क्षेत्र में करियर बनाते समय युवाओं से सबसे आम गलतियां कौन सी होती हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए?
0: मैम सबसे बड़ी गलती होती है बिना डिजी शिपिंग की वेबसाइट चेक किए फर्जी कॉलेज में एडमिशन लेना। दूसरी गलती शॉर्टकट ढूंढना। आजकल जो जेंजी है उनको शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक रहता है मैम इस फील्ड में।
1: तो आजकल कई फर्जी संस्थान और एजेंसियां नौकरी का झांसा भी देती हैं, है ना? तो युवा सही संस्थान और प्रशिक्षण अकादमी की पहचान कैसे करें?
0: मैम सिर्फ एक ही उपाय है इसका, वो है digishipping.government.in।
1: जी
0: इस वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज का नाम चेक करें, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो एडमिशन बिल्कुल भी ना लें, चाहे वो 100% जॉब की गारंटी दें, चाहे कुछ भी बोलें, वो एकदम फर्जी है मैम।
1: अच्छा सौरभ जी, यदि किसी युवा को समुद्र से डर लगता हो लेकिन वह इस क्षेत्र में आना चाहता हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: मैम डर लगना स्वाभाविक है, मुझे भी लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप तैरना सीखें, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखें। जहाज इतना बड़ा होता है कि अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप समुंदर में हो या बाहर हैं।
1: अच्छा, और ये सारा प्रशिक्षण जो है वहाँ दिया जाता है।
0: जी मैम,
1: तो सौरभ जी, आपने अपने करियर में कौन सा ऐसा अनुभव देखा जिसने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया?
0: मैम मेरी जो फर्स्ट सेलिंग थी वो थी दुबई से ईरान के बीच में जाता था हमारा जहाज मैम, और उसमें क्या था कि 3 जनरेटर होते हैं मैम, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है सारी प्रोड्यूस होती है मैम
1: जी
0: शिप में। तो
1: हाँ,
0: उसका जो थर्ड जनरेटर था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी मैम, तो वो प्रॉब्लम इतनी थी कि उसको 6 घंटे लगे उस पे काम करते हुए मैम। उसमें हम सारी टीम वर्क जो था वो सारे कर रहे थे, लेकिन उसको सोल्व करने में 6 आवर्स लग गया मैम। सिक्स
1: अच्छा
0: आवर्स के बाद जैसे ही उसकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गई, तो उसमें मैम सबने, कैप्टन ने भी काफ़ी तारीफ की मैम, और
1: जी,
0: मुझे सबसे ज़्यादा गर्व जो हुआ मैम उस टाइम, वो मुझे मेरी यूनिफॉर्म के ऊपर हुआ मैम।
1: बहुत बढ़िया, है ना?
0: यस
1: चुनौतियां तो
0: मैम,
1: हर क्षेत्र में आती हैं, तो चुनौतियों का सामना भी हमें ही करना है, तो बहुत
0: यस
1: अच्छी
0: मैम,
1: बात है सौरभ जी।
0: जी मैम।
1: अच्छा, आपने अपने करियर में कौन सा ऐसा अनुभव देखा जिसने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया?
0: मैम मैंने सबसे ज़्यादा अनुभव, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो मेरी फर्स्ट सेलिंग थी मैम, उसमें ये था कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब जो मुझे आगे क्रू मेंबर्स मिले वो भी एकदम काफ़ी अच्छे थे मैम, और हर टाइम कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती थी, माइनर सी भी मिस्टेक हो जाती थी, वो
1: जी
0: जहाज़ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मैम,
1: जी
0: लेकिन उसको भी कैसे, उस पर भी काम करना, सारी चीज़ों को लेकर के चलना मैम, तो ये सबसे अच्छा था मैम उसमें।
1: तो अच्छा, मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाने के बाद आगे बढ़ने के क्या अवसर हैं? क्या प्रमोशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अवसर मिलते हैं?
0: यस मैम, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर प्रमोशन चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर मैम। अगर आपको नॉलेज है और आप सक्षम हैं जहाज़ पे काम करने के लिए, तो आपकी प्रमोशन कोई भी नहीं रोक सकता है मैम। बहुत कम उम्र के हमारे पास अभी हिमाचल में ही काफ़ी ज़्यादा कैप्टन्स हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जो एक बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचे हैं।
1: यदि आज कोई युवा आपका ये साक्षात्कार सुन रहा है और मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है तो उसे अभी से कौन सी 3 बातें अपनानी चाहिए सौरभ जी, वो हमें बताएं।
0: मैम सबसे पहले अपनी फिटनेस और नॉलेज,

0: और एजुकेशन मैम, इस पे उनको पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए मैम।
1: अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करें, स्वस्थ रहें और शारीरिक फिटनेस पे ज्यादा जोर दें।
0: जी जी जी मैम।
1: अच्छा सौरभ जी, अंत में हिमाचल और देश भर के युवाओं के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन सही दिशा की तलाश में हैं?
0: जी मैम, मैं सबको यही कहूंगा कि सपने देखने चाहिए मैम हमें, क्योंकि जब तक हम कोई सपना नहीं देखते तो उस पे हम काम नहीं कर सकते मैम। जब आप सपना देखोगे तो डेफिनेटली आप उस पे वर्क करोगे, आप पूरी लगन और मेहनत उसके ऊपर रखते हैं मैम। और दूसरी बात ये है कि अगर मर्चेंट नेवी में जो भी मेरे भाई हैं, जो भी आना चाहते हैं, तो उनको सही गाइडलाइन और सही दिशा जो है मैम, उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, आज हमारे जो श्रोताओं हैं उन्हें भी बहुत अच्छी प्रेरणा आज सौरभ जी से मिली है, तो धन्यवाद करना चाहूंगी
0: जी,
1: आपका स्टूडियोज में आने के लिए। धन्यवाद।
2: सौरभ के जोश भरे शब्दों को सुनकर आपको भी युवा साथियों प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हमें फील्ड में जाना है और किस तरह से अपने समय को मैनेज करना है। तो नई उड़ान केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि अपने सपनों को नई दिशा देना और चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प भी है। युवा जीवन वह समय होता है जब हर कोई अपने भविष्य की नींव रखता है। इस उम्र में लिए गए छोटे छोटे निर्णय आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। नई उड़ान का अर्थ है पुरानी असफलताओं से सीखना, नए लक्ष्य निर्धारित करना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, कभी असफलता भी मिलती है, कभी परिस्थितियां चुनौती भी देती हैं, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक गाना आपको सुनवाते हैं, उसके बाद तुरंत लौटेंगे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
3: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
2: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
3: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। युवा साथियों, आज के युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला, उद्यमिता और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। डिजिटल तकनीक और बदलते अवसरों ने युवाओं के सामने सीखने और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नए रास्ते खोले हैं। नई उड़ान के लिए तीन बातें होना, धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है, और तीसरा आत्मविश्वास। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर हमें समझना चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर पाएंगे।

युवा साथियों, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दें इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर मौजंग रैंदियां कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा एक ही संगीतकार और आज के संगीतकार हैं हेमंत कुमार। 9:30 पर गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात 10:00 एशियाई खेल 2026 के डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद लाइव फोन इन प्रोग्राम पसंद आपकी गीत हमारे पेश किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोता, ये तो थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोपहर 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुनो सखी। कल शाम 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतजार।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि विकास कार्यों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है। वे आज सोलन में जिला व उपमंडल स्तरीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मनसार गांव के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। चंबा जिला में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने आज चुवाड़ी में जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुड़ ने की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने केंद्रीय टीम को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान, राहत व पुनर्स्थापना कार्यों की जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय टीम ने भटियात क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों कालीधार व टिक्कर गला सहित अन्य इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सिरमौर जिला के संगड़ाह में अवैज्ञानिक तरीके से चल रही खनन गतिविधियों के खिलाफ लोगों ने रोष रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वसुंधरा संरक्षण समिति के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को रोकने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। रणजीत सिंह ने कहा कि जब तक अवैज्ञानिक तरीके से चल रही खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
5: हमारी ग्राम पंचायत में जो कुछ महिलाओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने धरती को संरक्षित करने के लिए और संगड़ाह मंडोली भड़वाना में चल रहे अवैध तरीके से और अवैज्ञानिक तरीके से चल रहे माइनिंग को रोकने के लिए एक रैली निकाली है। जब तक ये अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन बंद नहीं होगा, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। और शासन और प्रशासन के लिए हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि यदि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम शासन और प्रशासन के विरोध में सड़कों पर आकर अनशन पर भी और धरना प्रदर्शन भी करेंगे।
4: दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आज चायलकोटी महाविद्यालय में आरंभ हुआ। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से जूडो खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों से पुरुष व महिला 30 कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल की खिलाड़ियों का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। टीम की इस उपलब्धि में हिमाचल से जुड़ी खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा। कबड्डी टीम की खिलाड़ी ज्योति ठाकुर व भावना ठाकुर ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए जीत का श्रेय कोच पूजा ठाकुर, भारतीय कबड्डी फेडरेशन और साई धर्मशाला के स्टाफ सहित परिवार को दिया है। उन्होंने सफलता के पीछे टीम की एकजुटता और कोच की रणनीति को महत्वपूर्ण बताया।
6: सबसे पहले तो मैं अपने सभी कोचेज का, फेडरेशन का और अपने साई स्टाफ का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छी ट्रेनिंग की वजह से ये चीज पॉसिबल है। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कबड्डी एसोसिएशन ने और हम देश के लिए मेडल लेकर आए।
7: मेरा भी फर्स्ट टाइम ही एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा भी एक सपना था और इस

0: शॉर्टकट ना बनाए।
1: प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और अन्य भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल 29 सितम्बर से मौसम में सुधार आएगा और केवल कांगड़ा व मंडी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी सप्रेम नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा।

जी श्रोताओं, ज़िंदगी बिल्कुल प्यार के एक गीत की तरह है जिसे हर कोई गुनगुनाता है। बहुत ही सुरीले सदाबहार गीत आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम है सुरमई सांझ। सौतन फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, उषा हन्ना का संगीत, सावन कुमार के बोल। हीना फिल्म का ये नगमा अब आपके रेडियो सेट्स पर है। गीत और संगीत रविंद्र जैन के। एक बार फिर से मीठी सी आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
4: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस, अब स्ट्रॉन्ग

0: till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronks today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच नई पहचान अब हर सफर हो और भी शानदार
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप TNC अप्लाई
5: शाम के 6:25 और 37 सेकंड हुए हैं आपने ट्यून इन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं सुरमई सांझ

सदमा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का सुरभई सांझ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदी सुनने वाले सारे श्रोते जो पंच दी तरफा ते राम राम कन्ने आज ट्याले पर मेरे कन्ने ने केसर जी तुहांजो भी राम राम
1: राम राम पंच जी तुहांजो भी राम राम कन्ने सोगी साढ़े किसान भाई बहना जो भी केसरों की दोआ जोड़ी करी राम राम है
0: जी।
1: और दिखा कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां लेकर यहाँ हाजिर हुई हो ट्याले पर कन्ने आज यहाँ गलबात भी करनी है कन्ने सोगी साढ़े जोड़े किसान भाई इनसे जान देन कि यहाँ मनोरंजन भी करा देन प्यारे प्यारे लोक गीत भी सुना देन है ना जी।
0: हाँ जी
1: तो पंच जी सब तो पहले यहाँ ट्याले पर आई करी जड़ा काम कर देन सह कर देन कमे का है ना और गलबात कर देन जानकारी भी पुजा देन और आज जी जानकारी यहाँ लेकर आए हो किसान साथियों से लेके आए हो मछली पालन का कार्य के बारे च। वैसे तो साढ़े जोड़े किसान हैं सह इन्हें कम्मा जो करी के अजकल बड़ी ही अच्छी जड़ी आमदनी कमा कर देन और हर कोई जड़ा ऐसा अगे बधा करता है इन्हें कम्मा जो करी के आमदनी दे वास्ते है ना। नहीं तो अजकल क्या होंगे कि हाँ पढ़ी लिखी के कुथी कोई ना कोई रोज़गार तो अपना वास्ते कई बार अपने देश परदेश जो छड़ी करी बाहर भी चली आते पर हाँ ये गलाना चाहेंगे कि तू हाँ इतू रही करी भी अपने घर च ही ऐसे काम सीखी करी बड़ा अच्छा काम जो ऐसे करी सकते हैं और अज हाँ जो गल करनी इसे है मछली पालन दे बारे च।
0: बिल्कुल केसरी जी तू ठीक गला दे हाँ जो जड़ा से
1: जी
0: मछली पालन दा जड़ा काम है अपने घर द्वार विच जड़ा से करी करी एक अच्छी आर्थिक की जड़ी से हाँ कमाई सकते और इस कोई भी काम है तो जो शुरू करने वास्ते जड़ा से हाँ जो सब ते पहले तो उन्हां दी जड़े बीज हुंदा है किसी चीज़ दा है ना या
1: जी
0: फिर फसल लगानी तो बीज हुई है या फिर कोई चीज़ ऐसी उत्पादन करना जी मछली उत्पादन है तो तिना दी प्रजाति दे बारे च सानू पता जड़ा से जरूर होना चाहिए कि साढ़े इलाके वास्ते जड़ी से कौन दी प्रजाति जड़ी से अच्छी मन्नी जाती है ना उत्पादन के हिसाब ने
1: जी बिल्कुल
0: जातियां प्रजातियों की गल करी तो मछली च सब ते जड़ी प्रमुख प्रजातियां जियां रोहू हो या कतला है मृगल है कॉमन कॉर्प है ग्रास कॉर्प है ये कुछ एक प्रजातियां ने जिन्हों का अहाँ जरा से उत्पादन जरा से करी सकते हैं है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और कन्ने कन्ने इस दे बारे च अहाँ गल करिए अहाँ जो सब ते पहले तो एक तालाब की जरूरत पौंदी और कन्ने कन्ने जरा से पानी दी जड़ी से उत्तु सुविधा होना बड़ा जरूरी अगर
1: जरूरी
0: हम
1: है
0: मछली उत्पादन द काम जड़ा से करना चाहते हैं है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और कन्ने ही इन्हां दे जी कि हाँ मछली दे बीज दे बारे च गल कर दे ता स्वस्थ और प्रमाणित स्रोत से जड़ा से बीज हाँ जो लेना चाहिए और कन्ने ही संख्या तालाब दे आकार दे अनुसार जड़ी से बीजा दी होना चाहिए और पानी दी गुणवत्ता और कन्ने ही उपलब्ध ऑक्सीजन का भी जड़ा से हाँ मानक जड़े से तय करने न यानी कि कुल मिलाए के अहाँ जो सब तो पहले तो इन चीज़ों की जी इसे जानकारी होना जरूरी है एक अच्छा प्रशिक्षण ले करी इस कमे जो अहाँ जेड़ा से अच्छी तरह करी सकते हैं।
1: जी पंच जी तो हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई कि मछलियाँ दे स्वस्थ रखने वास्ते तालाब का पानी जड़ा है से साफ होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता जी सांझो जरूर जांचना चाहिए है और तालाब च अगर अचानक पानी की गुणवत्ता बदलती है और ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो इसकी भी साफ सफाई का सांझो पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए है
0: जी।
1: इस वास्ते किसान जड़े से टेमे टेमे पर तालाब की स्थिति दिखते रहन कने मछलियाँ च अगर बीमारी या कोई असामान्य व्यवहार नज़र आता है तो जल्दी से जल्दी मत्स्य विभाग या विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल केसर जी कने अहाँ गल करिए अगर अहाँ दे पहाड़ी क्षेत्र जिथु की ठंडा पानी जड़ा से सांझो उपलब्ध रहता था उतु जड़ा से ट्राउट मछली जड़ी से बड़ी उपयुक्त तो मनी जाती है पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब ने तो इस विच अहाँ गल करिए अहाँ दे जड़े जियाँ कि कुछ एक क्षेत्र जियाँ कि साढ़ा किन्नौर है
1: जी
0: साढ़ा मंडी दे कुछ एक क्षेत्र न उतू या फिर साढ़े कुल्लू दे क्षेत्र न या फिर अहाँ दे अपने कांगड़े दे क्षेत्र ले लिए जियाँ कि बो बैली है
1: जी
0: करेरी है फिर उपली क्षेत्र दे जितने भी साढ़े जित्थू कि अहाँ दो प्राकृतिक जल स्रोत मिलते हैं और उतू का पानी जड़ा सा 18-20 डिग्री ते जड़ा सा नीचे है यानी कि ठंडा है।

0: तित्थू जेह्ड़ा सै ट्रोट मछली का उत्पादन जेह्ड़ा सै
1: करी
0: साढ़े किसान
1: सकदे
0: भाई
1: हैं।
0: बड़े आसानी कन्नै करी सकदे न।
1: बिल्कुल
0: और करब करदे अहाँ कई बार उपरी क्षेत्र च घूमना चाहते जियां करेरी हुई आ बो वैली हुई है, तो तित्थू जेह्ड़े तित्थू के जेह्ड़े लोग न तिना छोटे छोटे तालाब बनाई के जेह्ड़ा सै जेह्ड़ा प्राकृतिक जल नदी नालियां च जेह्ड़ा सै चला करदा तिसदा ही प्रयोग
1: इस्तेमाल
0: करी
1: कीते
0: करी
1: जी।
0: जेह्ड़ा सै
1: बिल्कुल
0: अपना अच्छा उत्पादन जेह्ड़ा सै ट्राउट मछली का लिया कर देन। हाँ इस तरह ही कुछ एक अगर हाँ मछली उत्पादन करना चाहते हैं तो छोटे स्तर पर इस जो शुरुआत
1: शुरुआत
0: करी
1: करी
0: के
1: सकते
0: छोटे
1: जी।
0: छोटे यानी कि तालाब बनाई करी इस दा जिहड़ी से शुरुआत करी सकते। और जी जी सांझो अनुभव होंदा जांदा कुछ भी चीज़ा तो अहाँ जो तिस जो जेड़े से बड़े स्तर पर भी ले जाई के
1: करी
0: एक
1: सकते
0: अच्छा उत्पादन जेड़े से मछली का करी सकते और अच्छी इसते आमदनी जिहड़ी से ले सकते, है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल पंज जी। और दिखा हुण कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां च अहां जिहड़ी इस गलबात कीती जानकारी भी अपने किसान भाइयों तक पहुँचाई है। कने हुण मुझे लगा था कि लोक जानकार जिहड़ी इस अहां लगानी है ताकि साढ़े जिहड़े किसान भाई हैं तिन्हां दी थकावट भी दूर हो जाए कने थोड़े जैसे भी मनोरंजन करी लैन, है ना जी।
0: जी जी

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: जान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
4: तो किसान साथियों दिखा संजा दे वेले अहाँ माता दी भेंट सुनी है और दिखा माता दी भेंट सुनी के थोड़ा दिया भक्ति में जड़ा है माहौल से बनी है
5: जी।
4: और हूँ अहाँ फिर ते आगे बढ़ना है कने गल बात करनी है आजकल दे खेती बाड़ी दे कम्मा काजा दी है ना जी। तो पंच जी दिखा हूँ मटर पालक मूली शलगम धनिया कने सरसों जैसी जड़ी सब्जियां ने तिना दी बुआई जड़ी इसे शुरू हुई है कुथी कुथी तक लोगों ने करी भी दीती है ना जी।
5: सर्दियों का मौसम बिल्कुल किसान भाई खेतर जी हरी सब्जियों की भरमार है
4: बिल्कुल। और जी सर्दियां आई जाए तो साग का सब तो पहले नजर आता कि कुछ साग मिली है कने साग साग कने जी छलिया की रोटियां गर्म गर्म मिली हैं तो भी खाने का मजा आई जाता है। और ये मौसम जरा ऐसा होंगे कि हरी भरी सब्जियां जी सू मिली आदि तो दिखा बुआई जी इसे करनी है और खेत तैयार करने वास्ते सब तो पहले जरा इसे सू अच्छी तरह ने सफाई करनी है और मिट्टी जो भुर भुरा कर लेना चाहिए है। और अगर गली सड़ी गोबर की खाद मिली आए अगर तुहां वल भी है अगर नहीं भी है तो तुहां कुछ ते ले सकते हैं तिसते भी खाद पाई करी अपनी खेत च तुहां अच्छी फसल जी इसे तैयार करी सकते हैं है ना जी, जी।, जी। और मटरां की गल की जाए तो मटर जो सीधे जड़ा है कतारा च बोना चाहिए है बीज जड़ा से ज़्यादा गहराई च नहीं पाना चाहिए है और खेत च पानी जमा नहीं होना देना है। बुआई तो पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ ने अपनी क्षेत्र के वास्ते उपयुक्त किस्म और बीजोपचार की जानकारी ले लेना चाहिए है।
5: बिल्कुल तुम ठीक गला दे हाँ दे जड़े खेत ने तिना च नमी जड़ी इसे ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही बड़ी घट होना चाहिए।
4: बिल्कुल
5: वैसे साढ़े इलाके जड़े इसे पिछले दो तीन दिन ते बारिश होगा
4: दी हाँ जी हाँ जी
5: जड़े से हाँ दे जड़े
4: नमी जड़ी इसे है
5: नमी काफ़ी और थोड़ी नमी का हाँ जो जड़ा से इंतजार करना जी ही मौसम ठीक होता तो हाँ अपनी ये जड़ी सब्जियां जी कि खीरा है घीया तुराई है करेला कद्दू इन्हों दे तुड़ाई का भी कम करना और कन्ने कन्ने आने वाली जी सर्दियों की फसल ने जी कि तुम दसी मटर वगैरह है ना
4: बिल्कुल
5: तो उन्होंने जी इसे बुआई का कम कार भी हाँ जड़ा से कन्ने कन्ने करते रहना है ना
4: जी जी।
5: ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੂ ਸਗਾੜੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸਹਿ ਅਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਅਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕ ਜਨਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

0: जी तां हाय नरोत्तम होर दी प्यारी दी आवाज़ च लोक गीत सुनया। कन्नै आशा
1: जी
0: करनी कि संझा दी वेल्लै सारें पसंद आया होना
1: बिल्कुल
0: और इसी लोक गीत कन्नै साढ़े कार्यक्रम दा भी जेह्ड़ा से समय होआ करदा। पर जाने ते पहले दसदी कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रेहा अंकित
1: अंकित
0: दीवान
1: दीवान
0: होर
1: होर
0: दा,
1: दा।
0: कन्नै प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह होरा, हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो।
1: कने केसरो जो दिया अनुमति।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: जी,
1: जी,
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशिया खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, ADIA Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing the media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
4: Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that India has so far successfully navigated disruptions to crude oil and natural gas supplies amid the ongoing West Asia crisis and disruptions in the Strait of Hormuz. Addressing an event organized by the Merchants' Chamber of Commerce and Industry in Kolkata, however, acknowledged that the global energy situation remains challenging going forward. He assured that the government is closely monitoring the situation and will ensure that the disruptions do not get out of control. Indian Railways has approved the 122 crore rupees for 6-kilometer Barubil Bolanikdan doubling project of Southeastern Railway. This will strengthen rail infrastructure on an important mineral movement corridor. The Minister of Railways said that the project will facilitate additional freight traffic of over 9 million tons per annum on this stretch after commissioning of the project. Indian Railways has also approved a new tri-weekly train service between Machilipatnam and Kurnool City via Vijayawada of South Coast Railway. This will provide an additional rail connectivity option between coastal and central parts of Andhra Pradesh. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the measures to control air pollution in the national capital. The Delhi government informed that there will be a complete ban on dust-generating demolition activity and outdoor civil construction activity from the 1st of November to 31st of January. Direct non-stop air connectivity between India and Mongolia began today with the launch of a regular service between New Delhi and Ulaanbaatar. This will reduce the journey between the two capitals to about 5 hours. The service operated by Mongolia's Hunu Air will run every Monday. The direct connection is expected to facilitate tourism, medical travelling and businesses. The new air link will also boost bilateral trade. In Nepal, at least 4 people lost their lives and 12 others are missing after an avalanche struck the base camp of Mount Himlang in mountainous Manang district. According to Manang's chief district officer, the bodies of 4 people have been recovered from the site. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today, with athletes making the mark across shooting, athletics, cricket, courage and boxing. The country added 8 more medals to its tally so far today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw, with Yashvir Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze medal. India's Srishankar Murali clinched the silver medal in the men's long jump, recording a best effort of 8.07 meters. Athlete Gulveer Singh won silver medal in the men's 1500-meter event. The athlete had earlier also won silver in the men's 10,000-meters event. In shooting, Isha Singh has won the silver medal in the women's 25-meter pistol individual event. Parul Chaudhary bagged bronze medal in the women's 5,000-meter event. Athlete Vidya Ramraj has won the bronze medal in the women's 400 meters hurdles. India currently 12th in the Asian Games medal standings with a total of 45 medals comprising 4 gold, 20 silver and 21 bronze. And that is the end of this news bulletin.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे ही श्रोतियों का एक बारी टियाले ते फिरी ते राम राम कने सारे का
1: जी
0: एक बारी फिरी ते स्वागत है। और टियाले पर मेरे कन्ने ने केसरी जी तुहांजो भी राम राम।
1: जी भैन जी तुहांजो भी राम राम कने किसान भाई बहना जो भी एक बारी फिरी ते केसरो दी दो जोड़ी करी प्यार भरी राम राम।
0: जी तो केसरी जी आज जेड़े से तुहां टियाले पर थोड़े कन्ने काफी समय बाद जेड़ी से मुलाकात हुई
1: मुलाकात
0: है,
1: हुई है।
0: तो इतने दिन तुहां करे आजकल क्या काम कार जेड़े से लाए उन्हें।
1: दिखा अजकल काम कार बड़े भरी होंगे दिखा हूँ अगे आने वाले काफ़ी सारे त्यौहार भी पिछे गए हूँ आने वाले भी हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: घर दिन साफ सफाइया भी करनिया होंगे कने फिर हूँ खेत खलिहान जड़े इनसे भी घा भी हूँ बढ़ने हुए हैं सब भी
0: जी जी
1: बढ़ना
0: जी
1: है कने बाकी जो साग सब्जी लगाई हुई मक्की लगाई हुई तो इसे टंडे भी कड़े
0: जी
1: है ना
0: जी
1: फिर छोटे छोटे काम जो घर के कभी मुकते नहीं
0: यानी कि
1: है।
0: कुल मिलाए के जेड़ा सा अजकल शहरी दे जेड़े साढ़े कामकार होंगे ने, मतलब ये ता साड़ी जेड़ी खरीफ दी फसल है ना,
1: जी
0: तो इसदे हाँ जो कामकार जेड़े इनसे रबी दी फसल ते जेड़े से दो गुना होंगे ने है ना।
1: बिल्कुल
0: इस बीच तुहां ले लिया मक्की दा काम है संजो, कन्ने कन्ने गाय दा
1: गाय
0: काम
1: का
0: है,
1: काम भी होता
0: और
1: आजकल
0: कन्ने साड़ा जेड़ा पशु धन है से भी अजकल नवजात बछड़े बछड़ियां साड़े वाल तैयार हुआ कर दी ने, तो थीदा
1: बिल्कुल
0: दा भी संजो काम पे होंदा। कन्ने कन्ने हुण जेड़ा से धाना दी फसल भी जड़ी है साड़ी तैयार हुआ कर दी है,
1: जी
0: तो तिसदा भी जेड़ा से काम पे होने वाला। तो यानी कि कुल मिलाए के चौं पंजे पासे जेड़ा से अजकल काम साड़े किसान भाई हैं बागवान भाई हैं पे होना, और काफ़ी सारी जड़ी है व्यस्तता है, और इस व्यस्तता दे बिच बिच जेड़ा से हुण थोड़ी मौसम भी साड़े किसान भाई
1: जी
0: हैं ड्रा करता है ना।
1: बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक गल गलाई दिखा पांचोर जी आज यहाँ टियाले पर आए हो ना कने
0: जी
1: आज तो मुझे स्वेटर कने शॉल की जरूरत पई है क्योंकि जड़ी 2-3 दिन बरखा जड़ी हल्की हल्की हुआ कर दी है ना
0: जी
1: तो इस कने क्या है कि हूँ बरखा कने ठंड हो गई कने जड़ा सामने धूलाधार है ना तो इस पर भी जड़ा ऐसे हल्की फुल्की बर्फ पई है कने चिट्टी चिट्टी जड़े थोड़ी चिट्टियाई नज़र हुआ कर दी है बर्फ दी तो हूँ जड़ी इसे सर्दी जड़ी इसे आई हो कने हूँ हाँ जो अपना ख्याल भी रखना है कने कंबल रजाइयाँ भी कढ़नियाँ कने सोगी पशु धन का भी ख्याल रखना क्योंकि तिन्हां दी जिहड़ियां गुराला होंदियां ना सहां गर्मियों च क्या करदे भी थोड़ा जिहा हवादार करी दिंदे पर हुण सानूं जरूरत पैंदी है कि तिन्हां जो थोड़ा जिहा बंद कर दिए कि हवा जिहड़ी इसे ज़्यादा ना जाए है ना
0: जी
1: जी
0: जी किशोर जी मैं थोड़े बोलने का जरा समझी है,
1: जी
0: मतलब कि हाँ जरा हूँ बदलते मौसम के बिच आए गए ना,
1: हाँ
0: यानी कि
1: जी
0: एक तरफ जी से बरसात खत्म हो करती, दूसरी तरफ जी
1: सर्दी
0: साड़ी
1: शुरू हो गई
0: सर्दियाँ शुरू हुई हैं, तो इस
1: बिल्कुल
0: वास्ते जरा हाँ जो एहतियात जी से बरतनी अपने स्वास्थ्य वास्ते अपने पशुधन के स्वास्थ्य के वास्ते है ना जी,
1: जी
0: और खासकर साढ़े जे बच्चे ने बुजुर्ग ने उन्हों का भी जरा इन्हों दिनों
1: ख्याल
0: खास ख्याल
1: रखना
0: रखने की जी से जरूरत होंगी
1: जी
0: है ना।
1: कने पंच जी दिखा हूँ कार्यक्रम खेतीबाड़ी जोड़ा सा हूँ शुरू हुई है कने गलबात भी हाँ की है कने जानकारी भी पुजानी है पर मुझे लगा था कि संजा का बेला है तो एक प्यारा दिया भजन जोड़ा सा हाँ सुनी लेंदे कने सोगी अपने किसान भाइयों जो भी सुनाई देंदे है ना
0: जी जरूर।
1: जी।

0: जी सर, किसान साथियों कार्यक्रम खेतीबाड़ी दे शुरुआत चाहें प्यारा दया लोक भजन सुनिया।
1: जी
0: कने
1: बिल्कुल।
0: इस लोक भजन के बाद हूँ हाँ चलना भेंट वार्ता की तरफ, और भेंट वार्ता च आज गलबात करनी है उन्नत महिला किसान मीरा देवी कने,
1: जी
0: ता आओ सुनते ने गलबात।
1: जी
2: किसान साथियों, आज दे अपने इस कार्यक्रम च ट्याले चाहन जुड़ी होन अहां दे उन्नत किसान है ना, तो उन्होंने पुछते हैं उन्हों का नाँ कने ग्रां कने सह कह खेतीबाड़ी करते है ना, तो वह पुछते हैं उन्होंने जी तुहाड़ा नाँ क्या कने कौन दे ग्रां पौंदा तुहाड़ा।
3: मेरा नाम मीरा देवी है, मैं मंडेड़ दी रहने वाली है, गांव मंडेड़।
2: हाँ जी, ता तुहां किदी किदी खेतीबाड़ी करते कने, जमीन कितनी है तुहां वाल?
3: मेरे वाल जमीन 1 हेक्टेयर है,
2: हाँ जी,
3: इस बीच मैं फुला दी खेती भी करा दी, सब्जियां भी उगांदी कने गेहूं वगैरह भी लगांदी।
2: अच्छा, ता तुहां इहदा बीज जड़ा से कुत्थों ते लैंदे?
3: बीज हाँ कृषि विभाग जड़ा है आहां दा बैनाथ तिथु ते लैंदे हाँ।
2: हाँ जी,
3: जी
2: अच्छा, ता ए दसा तुहां कि अगर कोई अहां दा जड़ा नवयुक्त किसान ऐसे फुलां दी खेती बाड़ी करना चाहे, तो सह कुथु ते जड़ा सह इदा बीज लै कने कि सह इदी इस कम्मे दी जड़ी सह शुरुआत करे?
3: पहले तो जोड़ा किसान इस कम्मा करना चाहता तो जो उद्यान विभाग वाली जाना चाहिए,
2: हाँ जी
3: तिथु तीन ते मतलब जी ऐसे ट्रेनिंग दिंदे,
2: हाँ जी
3: ट्रेनिंग लेने के बाद ही जोड़ा ऐसा एक काम शुरू करना चाहिए।
2: हाँ जी,
3: कने इस दे जोड़े बूटे होंदे से होंदे बेंगलोर ते।
2: अच्छा,
3: हाँ जी हाँ जी,
2: ता इस कौन कौन किस्म होनी है इस फूला
3: इस
2: दिया?
3: विच फूला दी बड़ी ज्यादा किस्म है ना
2: हाँ जी,
3: जी, मैं जोड़ा लगाया फूल से कार्नेशन है,
2: अच्छा,
3: बाकी इस विच गुलाब, गेंदा, ग्लैड, लिलियम,
2: हाँ
3: बाकी और बड़ी बारी किस्म है ना बड़ी ज्यादा।
2: जी, अच्छा, तो तुम्हें तो दस्या था, पर ये भी होंगे कि कुछ इलाकों के हिसाब ने भी फुल होंगे कि ये फुलां की खेती जोड़ी
3: नहीं
2: ऐसा मौसम नहीं रखता कुछ भी प्रभाव इसी पर?
3: मौसम फसल लगाने का टाइम है,
2: हाँ जी,
3: बाकी हर जगह जड़ा ऐसा जड़ा मैं फूल लगाया कार्नेशन या कोई भी फूल से जड़ा हो जाता, हर जड़ा कोई भी वातावरण हो, कदे भी वातावरण च, पहाड़ा च भी, पहाड़ी इलाके च भी होना, मैदानी इलाके च भी होना।
2: अच्छा,
3: हाँ जी
2: ता ये दसा तो हाँ दे सुनने वाले कि मतलब इससे तो हाँ कितनी क्यों आननी हो जाती?
3: इस विच जी तुम देखा मेरे वाली था पहले 1,000 स्क्वायर मीटर,
2: अच्छा
3: 1,000 स्क्वायर मीटर का मतलब है 2.5 करनाल एरिया।
2: अच्छा
3: ये जेड़ा फूल मैं लगाया, ये फूल लगाना हो तो इस ताए पहले तो पोलियोस चाहिए,
2: अच्छा
3: ठीक है, तो इस 2.5 करनाल एरिया के अंदर जेड़ा मेरी पहले साल की जेड़ी आमदनी है शुरू दी 9.5 लाख है।
2: अच्छा 9.5 लाख
3: हाँ
2: है?
3: जी,
2: हाँ
3: तो
2: जी,
3: इस विच लगभग अगर थोड़ा लेबर ते करवाना है सारा
2: हाँ
3: काम
2: जी,
3: का,
2: खर्चा खुर्चा
3: पहले
2: कटेगा?
3: साल से जोड़ा है कोई लगभग 4.5-5 लाख दे तकरीबन खर्चा हो जाता।
2: अच्छा, पहले
3: हाँ
2: साल ले,
3: पहले साल ले, फिर ही मतलब जोड़ा ऐसा इस दी फसल जोड़ी है काफी लंबी टाइम रहती, 3-3.5 साल तक थोड़ा इस दी ढंग ने सेवा कर गए तो थोड़ा जो मतलब 3-3.5 साल तक थोड़ा इस ते आमदनी ले सकते फिर।
2: अच्छा जी, ये तो तुहां गल गलाई आमदनी दी, आमदनी तो बिल्कुल बढ़िया हो जाती, खर्चा भी तुहां दसी तभी 9 लाख रुपया लाया तुहां
3: हाँ
2: पहले
3: जी हाँ
2: साल
3: जी
2: है,
3: हाँ
2: तो
3: जी
2: इस जेड़ा 3-4 लाख रुपया तुहाड़ा खर्चा हो गया, बाकी मुनाफा है ना,
3: हाँ जी हाँ
2: तो
3: जी।
2: बाद अगले साल तो तुहाड़ा जेड़ा सा खर्चा घटी जांदा होना इतना
3: अगले
2: ज्यादा
3: साल, अगले साल क्या मतलब लाइफ टाइम मतलब आगे भी मतलब
2: जालू
3: जी
2: तक नो
3: जी थोड़ा
2: खेती
3: मतलब
2: करनी है?
3: खेती करना चाहते तो कुछ एक जड़ी तीस दी चीज मतलब लगाई हुई है ना। हाँ जी, इस विच सपोर्टिंग पाइप होंगी जी, हाँ तीस जो बेड बनाते कने फिर पाइप है जड़ी से तीस जो बेड जो जाला लगता जाले जो खड़ा रखने ताए
2: हाँ
3: से
2: जी,
3: जड़ी चीजें या जाला जन से हाँ जो मतलब सहत हाँ जो काफी टाइम तक जड़ा ऐसे हाँ चीज कमी आ जाती।
2: जी
3: फिर
2: जी
3: जल यहाँ नई फसल लगानी है मनी लिया उखाड़ी के, तो फिर क्या होता कि हाँ जड़ी पहले वाला सामान है सह यहाँ जो जड़ा ऐसा सह यूज कर लेते हाँ, तो तीसरा खर्च जड़ा हाँ जो नहीं पौंदा, फिर हाँ का खर्च होंगे जी बूटे लगाना
2: हाँ जी,
3: कने मतलब भेजना पैकिंग मटेरियल वगैरह जी पैकिंग करनी पेटी वगैरह च सही खर्च होना हाँ फिर
2: अच्छा, तो
3: बाद च।
2: तुम्हें जेड़ा सा इन्हें फुलों बेचने में दिक्कत तो नहीं होती, कुछ बिके आते?
3: ये फुल तुहांदे बिकने या ता दिल्ली या
2: अच्छा
3: फिर चंडीगढ़ जड़े होटल है ना, 5 स्टार
2: हाँ
3: थ्री
2: जी
3: स्टार तीस ची लगने तुहांदे फुल,
2: हाँ जी,
3: बाकी नजदीक तो इन्हां दा ज्यादा कोई है नहीं, इन्हां दा खरीदने वाले है नहीं, बाकी थोड़ा बहुत जियां फुल फाला दी जड़ी गड्डिया सजांदे से थोड़ा बहुत मतलब 50-100 स्टिकर ली आंदे, तीस कने आंदा कुछ होंदा नहीं
2: हाँ
3: क्योंकि
2: जी
3: अहां तो बेचना होंदा ज्यादा मात्रा च,
2: हाँ जी हाँ
3: तो
2: जी
3: सह हाँ जो फिर उथू दिल्ली जड़ा या फिर चंडीगढ़ अमृतसर,
2: हाँ जी हाँ
3: लेकिन
2: जी
3: दिल्ली जड़ी ऐसे बिल्कुल मेरा मतलब बढ़िया हाँ जो रेट भी कहने मंडी जड़ी है दिल्ली से बेस्ट है।
2: अच्छा, तो मतलब कोई किसान इत्थू करना चाहते थे ना, दिक्कत नहीं होनी बेचने से, मतलब जेड़ा ऐसा
3: हाँ
2: तुम्हें आपू करे आई के लिए आते कि क्या होंगे, वो ऑनलाइन होंगे कि
3: दिक्कत
2: क्या?
3: कोई नहीं होनी, जिस वक्त तुम मतलब फुल लगाते तो जेडे डीलर होंगे दिल्ली दे
2: हाँ
3: बैठे
2: जी हाँ
3: होते
2: जी
3: मतलब थी ना जो, क्योंकि तुम जो पता ही है बिजनेसमैन जेड़ा व्यापारी होंगे बड़ा बड़ा तेज होंगे, तीस जो ਸਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕੰਪਨੀ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਤੇ ਸਹਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਾ ਕਿਤਨੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਦਾ ਤੇਤੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਤੂੰ ਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
3: ਵੇਚਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿ ਤੂੰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਆਹ ਤੂੰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹਾਂ ਗਲਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਐਸੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰ

0: वास्ते
1: हाँ
0: जड़ा
1: जी
0: कने रिश्तेदारियां
1: हाँ जी हाँ
0: दूरियां
1: जी
0: चा
1: हाँ
0: ना
1: जी बड़ी
0: देने
1: हाँ जी
0: दाने
1: हाँ
0: ची
1: जी
0: है ना।
1: हाँ जी
0: अच्छा तो ये दसा तुहां भी दुध भी तुहां अपने घरे दे उदी तक रखे कि मतलब बेचते भी दुध दे
1: हाँ दूध बेची भी दिंदे कने घर आए भी रखते
0: तती दी ने तुहाड़ी किन्नी की उन्होंने हुई आदि
1: दूध ने तो हाँ दे भाई अपना घर का खर्च गाय का खर्च चली पौंदा कने सता घा पानी जेड़ा ऐसा तीसते दूध
0: अच्छा
1: दा निकल
0: तिस्ते
1: आंदा कने
0: निकली
1: हाँ जी
0: आंदा
1: हाँ जी
0: अच्छा कने
1: कने हाँ
0: अपना
1: यूज भी कर लेंदे
0: अपना
1: जी
0: दुध दही जेड़ा से बड़ी गल
1: अपना
0: घरे
1: हाँ
0: दा ही हुई
1: जी
0: आंदा
1: घर
0: है
1: दा ही
0: ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा तो तुम अहां दे जेड़े श्रोता ने कने सह चाहते बे कि फुलां दी खेती ते ना करनी है ना ता उना ताई तुहां क्या बोलना चाहेंगे भई ये घाटे का सौदा है कि
1: नहीं
0: मुनाफे का सौदा है कई कि इस वेले देखा तुहां पिछे दे या बड़े सारे अहां दे नवयुवक जेड़े से शहरां च नौकरियां करा दे है ना कने तिना दे जेड़े है रोजगार रोजगार जेड़े से कई कि कंपनियां बंद हुई है ना ता से घर ग्राए हो आईए
1: हाँ जी
0: ता उन
1: जी
0: से घर ग्राए बैठे हो ता से सोचा दे अहां अपना कुछ ना कुछ काम करिए है ना ता तुहां तिना क्या सलाह देना चाहेंगे से फुला दी खेती करना ता मुनाफा है देना हो।
1: बड़ा भारी ज्यादा मुनाफा
0: हां जी
1: कोई जरूरत ही नहीं है घर ते बाहर जाने दी अगर कुछ वाली अपनी जमीन है
0: हां जी हां
1: तो
0: जी
1: मेरी समझ जो फुला दी जेड़ी खेती है इससे बड़ी है तो कोई नौकरी भी नहीं है
0: हां जी हां जी
1: क्योंकि मैं 1,000 स्क्वायर मीटर अकेला कर दी थी
0: हां जी हां जी
1: लेबर का काम
0: हां
1: तीस
0: जी हां
1: विच
0: जी
1: तो मतलब ये तो आइडिया लगाई लिया भी पर मंथ कम से कम 50,000 रुपये मैं घरे बैठी कमा दी
0: अच्छा
1: ठीक है 30 करने मतलब देखा मेरा घर का सारा काम चलिया कने कन्नी मेरी आमदनी 50,000 जेड़ी सैल लग गया
0: सैर
1: सह
0: लग
1: भी मैं
0: गया।
1: संभालना लगाई
0: हां
1: दी
0: जी हां
1: तो
0: जी
1: मेरी समझ अजकल कने जेड़े नौजवान है ना
0: हां जी हां
1: इन्हें
0: जी
1: जो नौकरी दे पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है
0: हां जी
1: अगर इन्हें वाली जमीन है तो ता मैं बोलती भाई इससे बड़ी है तो कोई काम ही नहीं है बिजनेस जेड़ा है फुला दा बड़ा भारी बधिया बिजनेस है
0: हां
1: इस
0: जी
1: जो ता हाँ चाहन भाई जितने ज्यादा जेड़े युवक है ना जेड़े नौजवान है से आगे होन ता अहां दे इथु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ी नहीं डिस्ट्रिक्ट जेड़ा मंडी है जेड़े अप ओल्ड हिमाचल है इस चा ये काम बड़ा भारी ज्यादा करा दे लोग मतलब नौकरी छड़ी की भी मतलब इस काम करा दे
0: बिल्कुल जी ये तो
1: हाँ
0: हाँ ठीक
1: जी
0: लाया जी फुलां दी खेती आपां है जेड़ा ओ दे तां इस इक ए भी हा कि मतलब जेड़ियां आहां दियां दुईयां फसलां होंदियां ते तेने जेड़ा सै जंगली जानवर जेड़े इनसे सै बड़ा नुकसान पहुंचांदे तां इस च फुलां दी खेती पर कोई प्रभाव तां नहीं पौंदा जी बंदर
1: इस
0: होइए या कुछ होर होइए तां सै नुकसान तां नहीं पहुंचांदे आहां दी फसल।
1: एक तो नुकसान कुछ भी नहीं है
0: हां जी
1: क्योंकि ये जेड़ी फसल जेड़ी कार्नेशन लगानी
0: हां
1: ये
0: जी
1: होंगी पोलियो से अंदर
0: अच्छा अंदर होंदी
1: हाँ
0: हां
1: जी
0: जी
1: इस बीच ठीक है मैं तुम्हें दस्या पहले भाई फुला दी किस्म बड़ी भारी है जी एक लिलियम हुई है ग्लैड हुई है से बाहरी हुई अंदर गेंदा
0: हाँ
1: बाहरी
0: जी
1: हुई अंदर
0: हाँ जी हाँ
1: लेकिन थोड़ा कार्नेशन ऐसा है कार्नेशन लंबे टाइम दी फसल है
0: जी
1: तो इस विषय जेड़ा ऐसे जब तक तुम जी उखाड़ी के बाहर नहीं सट गया तो मतलब इसकी आमदनी जेड़ी ऐसे चली ही रहनी मतलब उखाड़ने के बाद ही बंद होना इसकी वे उखाड़ने बाद तुम जो कुछ नहीं देना वो
0: जी
1: जब तक नहीं उखाड़ के तुम 4 साल नहीं उखाड़ गए तो तुम जो 4 साल 20 दिन दे रहना लेकिन ये है भाई जेड़ी क्वालिटी जेड़ी
0: हाँ
1: दो
0: जी
1: तीन साल च होनी सह चौथे साल लेनी होनी थोड़ा क्वालिटी च फर्क पौना
0: हाँ
1: इस
0: जी
1: जेड़ी बाकी इस बीच डंगरा डुंगरा का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बोलियो से दिल्ली जी जि जि दिल्ली साई शहर च जेड़ा ये काम करना है तुम
0: हाँ
1: फूल
0: जी
1: दी फूल बेचने अंत ते तू थोड़ी दी क्वालिटी चाहिए
0: अच्छा
1: हाँ दा जेड़ा उत्पाद है तिस क्वालिटी चाहिए ताई तुम जो जेड़ा सा तू बढ़िया रेट मिलना
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तुहां ये तक लाया हुण तुहां फुला दी खेती करा दे ता तुहां दे कुछ अपने अनुभव भी हैं इस कम्मे कर दे
1: हाँ
0: तुहां एक
1: जी
0: दो साल तो हुई ही होने है ना
1: हाँ जी हाँ
0: ता
1: जी
0: तुहां जेड़ा नवयुवक अगर इस इलाके दा कोई करना चाहे ता सह कुण दे किस्मा दा चयन करे जे तुहां थोड़ी दी सलाह दे तुसी
1: मैं
0: ता।
1: तो तीन जो यही सलाह देंगी भाई कोई भी युवक अगर इस काम करना चाहता है
0: हां जी
1: तो मतलब एक तो हाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखी लेना चाहे
0: हाँ जी तो हाँ
1: मेरा
0: बोल ही दिया
1: हाँ
0: अपना
1: जी मेरा
0: कॉन्टेक्ट नंबर।
1: कॉन्टेक्ट नंबर है 9815
0: हाँ जी
1: 5997
0: एक बारी फिर ते हाँ दे
1: हाँ जी
0: सुनने वाले बोली
1: हाँ
0: दिया
1: जी 9815
0: हाँ जी कने
1: 5997
0: तुम्हारा नाम।
1: मेरा नाम हीरा देवी है
0: हाँ जी
1: कने तुहा मेरा ग्रां दा नाम डेढ़
0: हाँ
1: है
0: जी
1: कने तुहा मतलब अगर कोई युवक नौजवान करना चाहता तो तुहा मुझे इस नंबर पर कॉल करा मैं तुहा जो जेड़ी मिंजो वाली जितनी भी मेरे वाली इस बारे च जो नॉलेज होना या जो भी ज्ञान होना मैं से तुहा जो दसना
0: तुहाड़े जेड़े भी
1: हाँ
0: अनुबंध है
1: जी
0: तुहां
1: से मैं
0: जरूर
1: दसने
0: समझा करे
1: लगी
0: है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल आंदे और भी मंजू कने जी और भी फार्मर लगे जुड़ना यंग ही मुंडा हूं पिछले साल ही जुड़िया
0: हां जी
1: नीचे बहनाते नीचे दा ही है
0: अच्छा
1: तीन ने मतलब 500 स्क्वायर मीटर च किया पहले
0: हां जी
1: हूं तीन 250 दे दो और लाए लगाना
0: अच्छा
1: हाँ जी तसे हाँ कने जुड़े हैं मतलब हाँ तीस जो फुल कोऑपरेट किया मतलब कि भाई तू मार्केट ते लेके बे मतलब धरती ते लेके ने जमीन बेचने उथू बेचने तक दा तीस दा
0: अच्छा
1: उत्पाद हाँ जी
0: अच्छा एक गल और दसा तुहां जे कोई चाह दा बंदा करना काम है ता घटते घट लागत कितनी की होनी है पहले साले तुसी हो मतलब तिनी जेड़ा से छोटी शुरुआत करनी अली ता घटते घट कितना की खर्चा आई जांदा इस कम में।
1: एक्चुअली इस दी बिल्कुल तुहां बिल्कुल लो लेवल दी शुरुआत भी नहीं कर सकदे,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी
1: देखा तुहां समान भेजना दिल्ली
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: तो 30 विच तुहां दा किराया भी लगना।
0: हाँ जी
1: अगर जियां इक्की पेटी च मनी लिया, हाँ इक्की पेटी च 50 बंडल पाई कर देन,
0: जी जी
1: कने तुहां दे 10 ही बंडल होवे ते किराया तो तुहां दा पेटी दा पूरी दा

0: चाहे
1: लगना
0: तुम
1: है।
0: 10 पा चाहे तुम 20 पा,
1: ठीक गला
0: तो
1: है।
0: कम से कम 500 स्क्वायर मीटर मतलब सवा करनाल एरिया जोड़ा
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा
0: तितने च तुम जो जोड़ा ऐसा काम शुरू करना
1: शुरू
0: पड़ना।
1: करना पड़ा तितने
0: तिसते
1: थे।
0: बाद जोड़ा है तुम स्टेप बाय स्टेप अपना काम बताई सकते।
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी, तिसते
1: ठीक।
0: कम नहीं, तिसते कम कर गए तो मतलब जोड़ा ऐसा है तुम जो मतलब दिक्कत रहनी पेटी बेचने की, तिस तुम जो क्या होना कि
1: मतलब
0: इन
1: थोड़ा बोलने का
0: इनकम
1: मतलब
0: जोड़ी
1: है कि
0: ऐसा
1: थोड़ा
0: कम ने
1: खर्चा ज्यादा लगना कने
0: इनकम
1: मुनाफा
0: कम। हाँ
1: घट
0: जी
1: घटिया ना।
0: हाँ जी
1: ठीक ला दे जी,
0: हाँ
1: ठीक
0: जी
1: ला दे। तो आज तुहां अपना जेड़ा सा कीमती समय यहां दे किसान साथियों ताई जेड़ा सा कढ़िया उदी ताई तुहां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
2: जी तो हाँ, ये भेंट वार्ता सुनी कने आशा करनी कि जरूर अहां दे किसान भाई हैं भी जड़े से कुछ इस तरह के काम कार करी के जड़े से
0: बिल्कुल
2: अपनी आमदनी जो और अपनी व्यवसाय जो जड़े से बढ़ाई सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, दूसरे दे जेड़े बोलते ना अनुभव होंगे से साढ़े कई बारी कम्मे आई जाते कने सो कोई ना कोई ऐसा एक रस्ता मिली आता कुछ करने का, तो ये जानकारियां जरूर सो सुनना चाहिए कने इन्हों का फायदा भी लेना चाहिए।
2: जी तो किशोर जी हूँ हाँ चलना कांगड़ा सब्जी मंडी की तरफ और
0: जी
2: आज दे जेड़े थोक भाव ने सह कुछ इस तरह ने। सब तो पहले गल करिए आलू, तो आलू रहा 10 से 22 रुपये प्रति किलो, प्याज 52 से 55 रुपये प्रति किलो,
0: जी
2: टमाटर 30 से 36, लहसुन 200 से 230, अदरक 80 से 100, शिमला मिर्च 65 से 70 रुपये प्रति किलो, अरबी 28 से 30, खीरा 35 से 40, मटर 170 से 180 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 55 से 65, बंद गोभी 25 से 30, बैंगन 22 से 25, कद्दू 15 से 25, मूली 20 से 25 रुपये प्रति किलो, पालक 40 से 45, हरी मिर्च रही आज कांगड़ा सब्जी मंडी च 60 से 70 रुपये प्रति किलो।
0: जी कने धनिया आज रहा 100 से 120 रुपये, तोरी रही 15 से 20 रुपये, भिंडी रही 25 से 30 रुपये, घिया रहा 20 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम, कटहल रहा कटहल का जड़ा मूल्य ऐसे सांझो अज मिल नहीं है,
2: जी
0: करेला जड़ा ऐसा रहा 25 से 30 रुपये, फ्रांस बीन रहा 50 से 60 रुपये, गाजरा रही 30 से 35 रुपये, मशरूम आज रहा 170 से 180 रुपये, और इस कने गंडियालियाँ रही 25 से 30 रुपये। कने फलों की गल की जाए तो सेब जड़ा ऐसे आज रहा 40 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम, केला रहा 40 से 50 प्रति दर्जन, अनार रहे अज 80 से 140, अनानास रहे 40 से 45, अमरूद अज रहा 100 से 130, और मौसमी रही 40 से 50, पपीता रहा अज 50 से 60 रुपये, संतरा रहा 90 से 100 रुपये, और इस कने नींबू जड़े से अज रहे 140 से 145 रुपये प्रति किलोग्राम।
2: जी ता ये तो थे कांगड़ा सब्जी मंडी दे आज दे थोक भाव। और
0: जी
2: इसके बाद हम गल करिए मौसम दी, तो मौसम च अज धर्मशाला दा जेड़ा न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सैलसियस और अधिकतम 14 डिग्री सैलसियस, चंबा दा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री, कांगड़ा दी गल करिए तो इतों का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सैलसियस और अधिकतम जेड़ा से 24 डिग्री सैलसियस रहा है। ऊना की गल करिए तो ऊना का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सैलसियस और अधिकतम जेड़ा से 27 डिग्री सैलसियस रहा। और मौसम विभाग बोला था कि आने वाले 2-3 दिन जेड़े से हुण मौसम थोड़ा ठीक रहना, तो अहां दे किसान भाई जेड़े से मौसम दे अनुसार जेड़े से कम कार
0: करी
2: करी
0: सकते
2: सकते
0: हैं।
2: हैं है ना।
0: जी जी
2: तो हुण
0: बिल्कुल।
2: अहां चलना लोक जानकार दी तरफ और
0: हाँ
2: सुनना
0: जी
2: एक प्यारा दे लोक गीत।
0: लोकगीत।

0: जी हाँ प्यारा दया लोकगीत सुने कने कार्यक्रम चलिया खेतीबाड़ी
1: जी
0: और कार्यक्रम दे अंत हाँ फिर ते एक और प्यारा दया लोकगीत जेड़े से सुन देन।
1: बिल्कुल जी।

0: जी तो किसान साथी हुण इसी प्यारे दे लोक गीत कन्ने साडे कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न हुंदा। हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने केसरो जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है। 7:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की ऐप डीटीएच सेवा और न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने 20वें एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को 5,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। एचपी शिवा परियोजना के तहत हिमाचल में 6,000 हेक्टेयर से अधिक बागवानी विकास कार्य प्रगति पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में 10 पर भाजपा का कब्जा, लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम कांगड़ा व चंबा जिलों के दौरे पर। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, अन्य इलाकों में बारिश का क्रम जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जा रहे 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल के पदक विजेताओं को 5,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की महिला खिलाड़ी पुष्पा राणा, ऋतु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह पुरुषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2,50,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1,50,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वे आज ऊना जिला के हरोली में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली के रामपुर पुल के समीप विकसित की जा रही न्यू हरोली की परिकल्पना में पूर्व सैनिक भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए 3,50,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एचपी शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 1,200,00,000 रुपए की सहायता प्राप्त हुई है और 6,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बागवानी विकास का कार्य किया जा रहा है। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बरोट घाटी का दौरा कर एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी विकास कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। बागवानी मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत लीची, अमरूद, अनार सहित विभिन्न उच्च मूल्यों वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने धमच्याण क्लस्टर में जापानी फल की फ्यूफ्यू किस्म के 19,280 पौधों व संबंधित अधोसंरचना का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया अभियान की। देश में विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान आज भारत की औद्योगिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है और अब देश में ही बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है।
2: देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में 95% से अधिक भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेशवासियों का भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीति व नियत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम देखकर मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी मंत्री व विधायक विचलित हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों में अपने ही घर में बुरी तरह हारने वाले मुख्यमंत्री अपने लिए विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 2500 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप सहित स्थानीय विधायक व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का 6 सदस्यीय दल 2 दिवसीय कांगड़ा व चंबा जिलों के दौरे पर है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडू के नेतृत्व में ये दल आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान व पुनर्वास कार्यों का जायजा ले रहा है। केंद्रीय टीम ने आज धर्मशाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान, राहत व पुनर्स्थापना कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बाद में केंद्रीय दल ने चंबा जिले के चुवाड़ी में जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने केंद्रीय टीम को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान, राहत व पुनर्स्थापना कार्यों की जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय टीम ने भटियात क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपनी आधिकारिक अध्ययन प्रवास यात्रा के तहत कल शाम फिनलैंड के मशहूर शहर नॉर्वे पहुंच गए हैं। उनका 30 सितंबर तक यहां कई ऐतिहासिक व प्रसिद्ध महानगरों में जाने का कार्यक्रम है। विधानसभा अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रॉम्जो में भारतीय समुदाय के छात्रों के साथ संवाद करने के अलावा वहां के शिक्षा पद्धति का अध्ययन भी करेंगे। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया जलवायु परिवर्तन, समुद्री विज्ञान, पर्यावरण और आर्कटिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षाविदों से चर्चा करेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और अन्य भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल 29 सितंबर से मौसम में सुधार आएगा और केवल कांगड़ा व मंडी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
6: आज अर्ली मॉर्निंग से ही प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी है और लगभग पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग छाई हुई है। तो आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जिसमें मैदानी क्षेत्र भी हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले डिस्ट्रिक्ट, इन सभी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दौर जारी रहेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। कल 29 तारीख से वेदर में काफी रिडक्शन आएगा और कल संभावना है कि मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा, मंडी, यहाँ पर एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 30 तारीख से संभावना है कि पूरे प्रदेश में लगभग मौसम खुल जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के तहत पंचायतों को आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है। इसी के तहत चंबा जिला की 303 पंचायतों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने आज चंबा जिला के करिया में भारत संचार निगम लिमिटेड के भारत नेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत नेट परियोजना से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को संचार व निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी।
7: इसमें वाईफाई की सुविधा मिलेगी गांव में और ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। जिला कांगड़ा में इसका शुभारंभ हो गया था। मैंने उसी समय इनको सख्ती से निर्देश दे दिए थे कि एकदम से विद इन वन मंथ ये योजना हमारे जिला चंबा में भी चलाई जाए, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी जिला को इस योजना की है तो वो जिला चंबा है। जो भारत नेट योजना है इसमें करीब करीब पूरा जिला चंबा कवर हो जाएगा।
1: इस बीच सांसद राजीव भारद्वाज ने चंबा में सड़क सुरक्षा के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने 20वें एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को 5,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। एचपी शिवा परियोजना के तहत हिमाचल में 6,000 हेक्टेयर से अधिक बागवानी विकास कार्य प्रगति पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

0: प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में 10 पर भाजपा का कब्जा, लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम कांगड़ा व चंबा जिलों के दौरे पर, और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, अन्य इलाकों में बारिश का क्रम जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा विभाग में बैचवाइज आधार पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 जॉब ट्रेनी के लिए 18 पदों को भरा जाना है। श्रम आयुक्त सह निदेशक रोजगार शिमला, हिमाचल प्रदेश और सभी संबंधितों को बैचवाइज आधार पर मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 जॉब ट्रेनी के 18 पदों को भरने के लिए मांग पत्र भेजे गए हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे योग्य उम्मीदवारों के नाम स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को उनके मोबाइल नंबर के साथ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 15 अक्टूबर तक और जनजातीय ट्राइबल क्षेत्रों से क्रमशः 20 अक्टूबर तक निर्धारित परफॉर्मा के अनुसार भेजे। भरे जाने वाले पदों का विवरण इस प्रकार से है, मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 ट्रेनी श्रेणी में पदों की संख्या और उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें इस वर्ष तक प्रायोजित स्पॉन्सर किया जाना है। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के 9 पद दिसंबर 2012 तक, सामान्य ईडब्ल्यूएस के 1 पद दिसंबर 2015, सामान्य डब्ल्यूएफएफ के 1 पद, अनुसूचित जाति के 5 पद, अनुसूचित जनजाति आरक्षित के 2 पद और कुल जो है 18 पद भरे जाने हैं। एमएलटी ग्रेड 2 के आरएनपी नियमों के अनुसार आवश्यकता योग्यता इस प्रकार से है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान साइंस में साइंस विषय में 10.2 उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल की डिग्री होनी चाहिए। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

दिलजीत दोसांझ का गाया ये पंजाबी गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ललित सेन के संगीत निर्देशन में फाल्गुनी पाठक को।

मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए, सुनिए अमरिंदर गिल की आवाज में।

रात्रि के 8:13 हुए हैं। आप सुन रहे हैं विविध संगीत। इंतजारी सबा इस एल्बम से ये गाना आप आपको सुनवा रहे हैं। संगीत अली खानी का, गायक कलाकार पंकज उदास।

फिरोज़ खान और कंठ कलेर की आवाज़ में गाए इस पंजाबी गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलर।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएंगी। लता
1: गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
3: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में $101.25 अरब तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में $76.20 अरब रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में $200 अरब के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
5: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी

0: प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 1 year before.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे।

0: हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 100,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail.

भारतीय संगीत जगत में हेमंत कुमार का नाम एक ऐसी मधुर और गहरी आवाज़ के लिए जाना जाता है जिसने हिंदी और बांग्ला संगीत को अपनी अलग पहचान दी। उनका मूल नाम हेमंत मुखोपाध्याय था। उनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ। उनका परिवार बाद में कोलकाता में बस गया। हेमंत कुमार का संगीत से जुड़ा बहुत ही कम उम्र में हो गया था। उन्होंने किशोरावस्था में आकाशवाणी के माध्यम से अपनी गायन प्रतिभा का परिचय देना वर्ष 1937 में देना शुरू कर दिया था, जब उनका पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी जारी हुआ। शुरू में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन संगीत के प्रति अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़कर संगीत को अपना जीवन समर्पित कर दिया। आगे चलकर वे एक सफल पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता बने। हिंदी सिनेमा में संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहचान आनंद मठ और विशेष रूप से नागिन जैसी फिल्मों से मजबूत हुई। नागिन के संगीत ने उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई। इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। बाद में उन्होंने जागृति, 20 साल और खामोशी जैसी फिल्मों के लिए भी यादगार संगीत दिया। हेमंत कुमार केवल हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं थे, वे बांग्ला संगीत के प्रमुख गायकों में भी गिने जाते हैं।

जने मने संगीतकार हेमंत कुमार की संगीतबद्ध की गई कुछ चुनिंदा रचनाएं आज एक ही संगीतकार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। उनकी आवाज़ की गंभीरता, सहजता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने उन्हें श्रोताओं के बीच विशेष स्थान दिलवाया। उन्होंने हिंदी और बांग्ला के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उनकी आवाज़ को लोकप्रिय रूप से वॉइस ऑफ गॉड जैसे विश्लेषणों से भी संबोधित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 26 सितंबर 1999 को हेमंत कुमार का निधन हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ और संगीत आज भी पुराने और नए दोनों पीढ़ियों के श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हेमंत कुमार का संगीत हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची कला समय की सीमाओं से परे होती है। उनकी मधुर आवाज़ और यादगार धुनें भारतीय संगीत की अमूल्य विरासत हैं, जिन्हें संगीत प्रेमी आज भी उसे बड़ी ही आत्मीयता से सुनते हैं। तो चलिए एक मीठा संगीत आपको एक और सुनवाते हैं।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

अभी आप सुन रहे थे एक ही संगीतकार और जाने माने संगीतकार हेमंत कुमार की संगीतबद्ध की गई रचनाएं आज के कार्यक्रम में आपने सुनी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। गूंज पहाड़ों के कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं रोशन लाल के गाए इस पहाड़ी रचना के साथ।

हिमाचली गीतों और लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए बलदेव सांख्यान को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 के डेली हाइलाइट्स रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया।

0: मिले। हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक। गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गईं। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी, ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट-ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थीं। इसके बाद आया निर्णायक शूट-ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट-ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट-ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का 2रा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
0: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग प्री क्वार्टर फाइनल इनकाउंटर. इट वॉज एन एक्सट्रीमली क्लोज कॉन्टेस्ट विद गणेश एजिंग पास साहिल 149-148, विनिंग द ऑल इंडियन बैटल बाय जस्ट 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
0: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है. पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है. पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया. एकता थामी से सुनिए आज का हाल.
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है. भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की. बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े. कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी. पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी. भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी. बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके. भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया.
0: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध. टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से.
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है. अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया. भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई. पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था. पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा. अभी यह मैच कल खेला जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे. उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे.
0: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है. इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं. आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से.
3: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की. तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झो को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा. महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की. तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा. जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही. जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी. तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
0: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सिपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
0: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
3: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासू ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4th स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली

0: क्वालिफिकेशन रेस में छठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में आठवें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी है। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals. And India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे। और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:19 और 44 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम पसंद आपकी गीत हमारे। लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। और श्रोताओं, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391 01892224391। जो फिल्में आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं, उन फिल्मों के नाम आपको बताते हैं। फिल्में हैं आक्रमण, अनोखी अदा, गीत, हीरा पन्ना, लव इन टोक्यो, माया, नीला आकाश, पेंटर बाबू, पिघलता आसमान, राजकुमार, तेरी मेहरबानियां और वक्त। इन फिल्मों में से कोई भी अपनी पसंद का गीत आप इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। हेलो हेलो जी, इनका कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे ये हमें दोबारा कॉल करेंगे। और श्रोताओं, ये बहुत सारी फिल्में आज के प्रोग्राम में हमने रखी हैं, जिनमें से आप हेलो
5: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
5: मैडम जी, मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
4: जी, स्वागत आपका। और बताएं, कौन सी फिल्म का गाना आज आपको सुनवाएं?
5: मैडम जी, गाना हमें आप सुना दीजिए। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू, तो उसके गीत के बोल है, कब तक शम्मा जली शामे गम याद नहीं।
4: जी, तो अब मुझे ये बताइए आप करते क्या हैं पॉल जी?
5: हमारी यहाँ मैडम जी जलंधर सिटी में ना पेंट की शॉप है, जो घरों दीवारों को पेंट करते हैं, पेंट की हमारी शॉप।
4: तभी आपने पेंटर बाबू फिल्म का गाना भी सुनना चाहा है।
5: इसका वैसे गाना तो इसके गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, कब तक शम्मा जली शामे गम याद नहीं।
4: जी, तो
5: लेकिन हमें हमारी लाइन से मिलता जुलता है इसलिए।
4: जी जी जी, तो आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके शौक क्या हैं?
5: मेरे शौक है जी, मैं तो रेडियो सुनना और

0: घर में पेड़ पौधे लगाना और किसी को पेड़ पौधे गिफ्ट भी करना।
1: जी, तो कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने
0: मेरे पास
1: आसपास?
0: ना तकरीबन 70 वैरायटी के पौधे हैं लगे हुए घर पे।
1: फलदार पौधे या फूल पत्तियों वाले?
0: फूलदार भी है, कुछ फलदार भी है, ज्यादा करके तो मेरे डेकोरेशन वाले पीस है घर में रखने
1: जी
0: वाले।
1: जी देखिए कितनी हरियाली बना रखी है। एक तो आप अपने लोगों के घरों को खूबसूरत बनाते हैं पेंट करके, और ऊपर से हरा भरा बनाकर भी उन्हें अपने घर को आप खूबसूरत रखते हैं। लोगों को भी सलाह देते हैं जब पेंट के लिए
0: बिल्कुल
1: आप?
0: जी, मैं कई बार ना हमारे घर में देखने आते हैं कि आपका घर कैसा है। हमने कोई किसी को होता ना भी हमारे घर में पेंट करेंगे तो कैसा लगेगा, तो फिर हम अपने घर में उनको ले आते हैं, वो बोलते हैं कि आपके घर में तो पेड़ पौधे भी बहुत लगे हैं। हमें बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वो ले जाओ इसमें
1: जी,
0: से, तो भी दे
1: तो
0: देते हैं हम।
1: जैसे कहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं। खूबसूरत
0: बिल्कुल
1: पेंटिंग्स
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: साथ खूबसूरत पौधे हों और प्रकृति का नज़ारा हो तो उस बात
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सर,
1: अलग
0: बिल्कुल
1: होती है। चलिए, आपने प्रोग्राम में
0: बिल्कुल।
1: कॉल किया और आपकी पसंद का गाना बिल्कुल बज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको डेलीगेट रहेगा, आपकी पूरी टीम को डेलीगेट रहेगा, और हमारा एक ग्रुप बना है हेलो फॉर मैच श्रोता रेडियो का ग्रुप, उन सभी को भी डेलीगेट रहेगा।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: बोलिए।

0: पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेलो
1: हेलो पवन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूं जी, पंजाब के जिला होशियारपुर तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी जी, स्वागत है। और बताएं कौन से फिल्म का गाना आज आपको सुनवाएं?
1: पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: जी, आजकल तो हीरे मोती बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगाई का ज़माना है। सोना चांदी हीरे मोती सभी 4 गुना 5 गुना कीमतों पर बिक रहे हैं।
1: देखिए, जो जिसका हृदय स्पष्ट है, जब साफ सुथरा है, किसी की चाहत होती है, तो उसका जो मन है वो हीरे से भी ज़्यादा बहुमूल्य होता है।
0: जी जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: ठीक है पवन जी,
0: शुक्रिया।

0: लाइफ ऑन इन प्रोग्राम पसंद आपकी गीत हमारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जी केशव जी, स्वागत है। और बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाएं।
1: मैडम फिल्मों का नाम नहीं सुन सका मैं।
0: फिल्मों के नाम हम दोहरा देते हैं, आक्रमण, अनोखी अदा, गीत, लव इन टोक्यो, माया, नीला आकाश, पिघलता आसमान, राजकुमार, तेरी मेहरबानियां।
1: पिघलता आसमान का सुना दो गाना जी।
0: जी पिघलता आसमान में से कौन सा सुनेंगे?
1: गाना ड्यूट सॉन्ग है वो।
0: जी मुझे ऐसा मिला मोती। जी आप बताएं आप करते क्या हैं?
1: तो साथ में कोई साथी है मेरे।
0: साथी का नाम भी ले सकते हैं और अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
1: हाँ मैडम, मैं रिटायर्ड हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
0: जी तो क्या आप पढ़ाते थे?
1: हाँ हाँ मैडम जी, मुझे अब 5-6 साल हो गए रिटायर हो गए। तो रेडियो सुनने का बड़ा शौक है मैडम। 1972 में रेडियो सुनना शुरू किया था।
0: जी जी, और आज भी आपका साथी बना हुआ है रेडियो।
1: मैडम रेडियो मैं रह नहीं सकता जी। मैडम जी नाराज रहती, कहती इतनी एज हो गई आप रेडियो सुनते रहते हो, क्या करूँ मैडम, रेडियो के बगैर नहीं रह सकता जी।
0: जी जी, हमारी दिनचर्या जो है बंद सी जाती है रेडियो के साथ, और अगर रेडियो ना चला हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है जीवन में।
1: क्या भगवान की कोई ऐसी मर्जी है, रेडियो के बगैर रह सकता है। खबरें सुनता, न्यूज भी सुनता हूँ और गाने भी सुनता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
1: मैं मैडम हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता था।
0: जी जी, चलो अच्छी बात है, दो लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं आप बच्चों को सिखाते थे। और चलिए आपकी पसंद का गाना हम पिघलता आसमान में से सुनवाएंगे, और आपके दो दोस्तों को भी
1: ये गाने के बोल है, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में मिलेगी।
0: जी है, बहुत बढ़िया गाना है। और चलिए गाना आपको सुनवा रहे हैं।
1: आजकल मेरी बेटी भी मैडम एक अनाउंसर है जी, टीवी में न्यूज भी पढ़ती है।
0: जी जी जी,
1: तो चलो मेरा उस पर प्रभाव पड़ गया मेरे सुनने का।
0: जी अच्छी बात है,
1: कृपा से वो भी ठीक ठाक है।
0: चलिए
1: प्रोग्राम देती है, न्यूज भी पढ़ती है,
0: अच्छी बात है। और आपकी पसंद हम पूरी कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों का नाम रह गए, दोस्त हैं मेरे जी, एक अपने आपके इधर से हिमाचल से गोल्डी भैया जी हैं जी, राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी, और हमारे डोडा के हैं पुष्कर नाथ शर्मा जी, पंछी राम शर्मा जी, रिंकू दीदी है, तो मेरी मैडम है श्रीमती सुषमा देवी, बच्चियां मेरी अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई साथ पाल शर्मा है।
0: जी चलिए आप सभी दोस्तों को आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।
1: ओके मैडम, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: जी, मेरा नाम वरिंदर कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश के नगर चौक से बात कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत, और बताएं क्या करते हैं और कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, पहले वो बता दीजिए।
1: मैडम, फिल्में कौन कौन सी बची हुई हैं अभी?
0: फिल्में हमारे पास वक्त, तेरी मेहरबानियाँ, राजकुमार, नीलाकाश, माया, लव इन टोक्यो, गीत, अनोखी अदा, आक्रमण।
1: जी मैडम, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ और गाना सुनना चाहूँगा वक्त फिल्म का।
0: जी, इसमें से कौन सा सुनेंगे?
1: जो देशभक्ति गीत है।
0: जी, गाना आपको सुनवाएंगे और बताएं आपकी शौक क्या है, क्या पसंद है आपको।
1: मुझे घूमना पसंद है सबसे ज़्यादा।
0: कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक?
1: मैं घूमा हूँ आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट घूमा हूँ।
0: जी, तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी?
1: राजस्थान।
0: जी, क्या खूबसूरती है राजस्थान की आपके हिसाब से, क्योंकि हर किसी की अपनी निगाह होती है, हर किसी की अपनी पसंद होती है।
1: वहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आप वहाँ पे अगर बिजली चली जाए गर्मियों में, तब भी वहाँ 24 घंटे हवा चली रहती है।
0: राजस्थान में हवा चलती है, सुबह शाम तो होती है, लेकिन दिन को तो बहुत गर्मी होती है सर्दियों में भी।
1: वो थोड़ा सा अलग है, वो चुरू है
0: जी,
1: जो माउंट आबू के पास है उससे थोड़ा सा पीछे है चुरू। वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वो गर्मी सहन हो जाती है, जो हिमाचल प्रदेश वाली है वो सहन नहीं होती।
0: आप तो बहुत ऐसे अजीब बात कर रहे हैं जो हमें भी सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो टेम्परेचर है एक्सट्रीम जो है वो 50-55 तक भी चला जाता है कुछ जगहों पर, और सर्दियों में भी वहाँ मतलब स्वेटर ना पहने जाए दिन के समय तो चलता है, सुबह शाम तो हल्की ठंड होती ही है।
1: नहीं मैडम, क्योंकि मैं वहाँ पे रह के आया हूँ 8 साल।
0: जी, शायद आप जिस जगह में रहे होंगे शायद वो वैसी होगी, और वैसे भी वहाँ जो मकान बनाए जाते हैं उसकी बनावट जो है बिल्कुल अलग किस्म की होती है, जो उनकी छतें होती हैं उसमें भी वो कुछ इस तरह से पुताई करते हैं, इवन वो चाहे वो पक्के मकान हो पर छत के ऊपर जो है वो मिट्टी लगाई जाती है, 2-3 परतें उस पर बिछाई जाती हैं, और आजकल तो कुछ नई तकनीकें भी चला दी हैं जिस पर पानी डाला जाता है ताकि नीचे जो है अगर बिजली चली भी जाए तो कमरे जो है वो ठंडे रहते हैं।
1: नहीं मैडम, यहाँ पे जो है वो गर्मियों में जो है वो उमस आती है। मैडम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुड़के, खाड़ी में मुड़के बोलते हैं शायद।
0: अच्छा जी, जी जी,
1: तो यहाँ पे मुड़के बर्दाश्त नहीं होते, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, और गर्मियों में आप नीम के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, हवा आपको ठंडी ही मिलेगी।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपको वहाँ का मौसम सुहावना लगा। और
1: और रजवाड़ों के महल हैं वहाँ पे, ब्लू सिटी है, पिंक सिटी है, हवा महल है, फिर झीलों का नगर उदयपुर है।
0: उदयपुर, जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है उदयपुर।
1: जी
0: जी, चलिए आपको गाना सुनवा रहे हैं वक्त फिल्म का, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, जिसे डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: जी स्वागत, और बताएं कौन से फिल्म का गाना आज आपको सुनवाएं लोकेंद्र जी।
1: मैडम जी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अभी हाल ही ट्यून किया है, मुझे फिल्मों के नाम नहीं मालूम है।
0: जी नाम हम बार बार दोहरा रहे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। आक्रमण, अनोखी अदा, गीत, लव इन टोक्यो, माया, नीला आकाश, राजकुमार, तेरी मेहरबानियां।
1: अनोखी अदा का सुना दीजिए मैडम, वो हाल क्या है दिनों का न पूछो सनम।
0: जी तो दिलों का हाल क्या है आजकल चल रहा?
1: हमारा हाल तो बहुत अच्छा रहता है मैडम जी, बिल्कुल मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आकाशवाणी धर्मशाला के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा।
0: जी जी, तो क्योंकि आपका जो काम धंधा है वो ऐसा है कि गाने सुबह शाम चलते ही रहते होंगे, तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेशन सुना जाता है?
1: मैडम जी जैसे तो पुराने लिसनर हैं, करीब 40-42 सालों से रेडियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम तो अधिकतर पुराने गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं, और पुराने गीत में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जो संगीत रहता है, जो कलाकार अपनी आवाज में मतलब गीत को गाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत रहता है। और जैसे अभी आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है
0: जी,
1: तो लता मंगेशकर जी इंदौर के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का गौरव है वो, और भारत का गौरव है लता मंगेशकर जी।
0: जी सुरों की मलिका हैं, स्वर कोकिला।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: हाँ जी बिल्कुल, उनके गले में स्वर शक्ति माता हैं
0: जी,
1: और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है अपने गायन कलाकार में।
0: जी जी जी, और बहुत सारे देश ये जानना चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके गले में, उनके कंठ में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है, वो जानना चाहते थे। ऐसा कहीं पढ़ा गया सुना गया?
1: हाँ, जी जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा था सुना भी था कि वो जांच करना चाहते थे कि आखिर में गले में कैसा मतलब इनका गला है, इतनी अच्छी आवाज है, मजबूत आवाज है उनकी।
0: जी जी जी, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: क्या करूं। रात्रि के 10:44 और 18 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे। हेलो हेलो हेलो जी, ये बात करते करते हमें बिल्कुल भूल गए और उम्मीद करेंगे हमें ये दोबारा कॉल करें। 01892-22-4391 हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम अरविंद है मैम।
0: जी अरविंद, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं तो धर्मशाला से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे
1: मैम? अब कौन कौन सी फिल्में बजी?
0: फिल्में हैं तेरी मेहरबानियाँ, राजकुमार, नीलाकाश, माया, लव इन टोक्यो, गीत और आक्रमण।
1: तेरी मेहरबानियों का सुना दो टाइटल सॉन्ग।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: मैं तो फिलहाल चौकीदारी का करता हूँ।
0: चौकीदारी का काम करते हैं?
1: हाँ जी।
0: जी तो अच्छी बात है, काम में आपको शर्माना नहीं चाहिए। अपना काम जो है बड़ी मेहनत से सभी लोग करते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और काम तो कोई भी हो सब अच्छा होता है, बस आपकी लगन आपकी मेहनत उसमें होनी चाहिए, है ना?
1: जी,
0: जी चलिए कुछ संदेश आपको सुनवाएंगे और उसके तुरंत बाद आपको इस फिल्म का टाइटल गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी? प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

श्रोता लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और 12 मिनट का समय अब हमारे पास शेष है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से फ़ोन मिलाइए। नंबर है 01892224391 01892224391।

0: हेलो जी, ये बिल्कुल भूल गए और कोई बात नहीं, जल्दी से उम्मीद करेंगे हमें कॉल करेंगे, क्योंकि बड़ी देर से ये हमें कॉल कर रहे थे। हेलो हेलो,
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: सुरेश गगन एजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: जी स्वागत, कौन से फिल्म का गाना सुनवाएं आपको?
1: मुझे बता दें जी, एक दो
0: फिल्में हैं, आक्रमण, राजकुमार, गीत, लव इन टोक्यो, माया, नील आकाश।
1: अब इसमें से लता तो कोई गीत मुझे याद नहीं आ रहा जी। और गीत फिल्म का सुना दे टाइटल सॉन्ग
0: जी। गाना आपको सुनवाते हैं और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। जी धन्यवाद जी, आपका भी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से
0: जी। कौन सा गाना सुनेंगे?
1: अपनी पसंद का कौन फिल्म आएगी मैडम जी?
0: फिल्में अब रह गई हैं हमारे पास आक्रमण, लव इन टोक्यो, माया, नीलाकाश और राजकुमार।
1: राजकुमार का सुना?
0: कौन सा सुनेंगे राजकुमार का? हेलो जी, ये फिल्म का नाम तो बता पाए लेकिन इनसे पूरी बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, इसमें से ही इनको गाना सुनवाएंगे।

जी श्रोताओ, प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बहुत सारे श्रोता हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और कॉल उठाने का समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिन श्रोताओं के कॉल आज लगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके नहीं लग पाए वे बिल्कुल निराश ना हो, वो अगली बार इसी प्रोग्राम में पसंद आपके गीत हमारे में सोमवार को कॉल कर सकते हैं। नंबर वही रहेगा 01892224391। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाजत, बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to